हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भी संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना।
0: माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

99.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।

0: तक भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
3: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
4: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
5: Oh no!
3: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
4: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। जी हां श्रोताओं, आज है संडे और संडे को फन डे बनाने के लिए रेडियो गुंजन बिल्कुल तैयार है। आपका मनोरंजन भी करेंगे, आपके साथ बातचीत का भी मजा लेंगे और साथ ही साथ साझा करेंगे आपके साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान कितना है। 17 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है और वातावरण में नमी है 58%। और श्रोताओं, कल के मौसम की बात करें तो कल पूरा दिन रिमझिम फुहारे जो है वो बरस रही थी और जहां गर्मी की बात करें, जब हम गर्मी से थोड़ा बहुत परेशान होते हैं तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं इंद्रदेव, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं हम पे। तो बारिश की रिमझिम फुहारे करके वो हम लोगों को जो है वो ठंडक प्रदान कर ही देते हैं। तो चलिए, ब्लेस्ड हैं हम सभी कि हम धर्मशाला और हिमाचल जैसी जगह में रहते हैं। कार्यक्रम में बातें भी होंगी श्रोताओं और आपके साथ जो है जानकारियां भी साझा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए लेकर के आए हैं प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। इंजॉय कीजिए श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत।
1: सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

श्रोतो 91.2 MHz पर आपने ट्यून किया है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और समय है आप कार्यक्रम में आज का विचार आप श्रोताओं के साथ साझा करने का। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का विचार। कल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना आज पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जिए। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं आज का विचार कि कल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना आज हम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जिए। श्रोताओं, हम सभी अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने आने वाले कल के लिए हम बहुत ही बड़ी बड़ी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और पूरी लगन के साथ हम काम भी करते हैं और उस तरफ अग्रसर होते हैं और अपने कल को बेहतर बना भी लेते हैं। और आज का ये विचार हमें यही संदेश देता है कि अगर हमें अपना आने वाला कल बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें आज से ही काम करना है, आज से ही प्रयास करना है, यानी कि अपने आज को हमें पूरी लगन और ईमानदारी के साथ जीना है, और तभी हमारा कल जो है वो बेहतर हो पाएगा। ना कि हम इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि हम कल जो है आने वाला कल बेहतर बनेगा, वो इस तरह से कि कल आएगा तब हम काम करेंगे। तो आने वाले कल के लिए हमें आज ही लगन और ईमानदारी के साथ काम करना है, तभी हमारा आज भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी सुंदर होगा। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आप एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोतो, इस प्यारे से सदाबहार नगमे को आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं और कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर भी। बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: जीना इसी का नाम है।
2: अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम की किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत में मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर दिया गया था। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में कल संपन्न हो गया। सम्मेलन में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
3: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: समुद्र तल से लगभग 6,050 मीटर यानी 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। धर्मशाला में भारत ने कल रात 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 24 ओवर 5 गेंद में 194 रन बनाए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक बनाया। उन्होंने 51 गेंद पर 102 रन बनाए। भारत के लिए नए खिलाड़ी हर्ष दुबे और गुरनूर बराड ने 3-3 विकेट लिए। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टोन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में भी ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। उपायुक्त हिमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर न घबराने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
5: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉकड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉकड्रिल के तहत सिसू में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकस नाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, NDRF, SDRF और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: मॉनसून से पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में प्री मानसून की ये सक्रियता 15 से 19 जून तक बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 से 25 जून के बीच हिमाचल में दस्तक देने की अनुकूल संभावनाएं हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है, दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, यूपीएस लागू करेगी भाजपा सरकार, शिमला में बोले नड्डा, पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट। जबकि अमर उजाला के मुताबिक, मैं दिल्ली में ही करूंगा काम, पेंशन स्कीम पर जयराम व प्रदेश के नेता लेंगे फैसला। पंजाब केसरी का शीर्षक है, मंडी मनाली एनएच पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल दस्तक लिखता है, धर्मशाला वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मॉनसून से पहले चोटियों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश। अमर उजाला का शीर्षक है, रोहतांग धौलाधार में बर्फबारी, शिमला मंडी व कांगड़ा में बारिश। जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश से तापमान में गिरावट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक होगी आयोजित। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया, 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और सभी श्रोताओं का स्वागत है फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं कार्यक्रम में आपको बता दें आज है 14 जून और 14 जून को विश्व भर में रक्तदान या रक्तदाता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्या है इस दिन का इतिहास, इसका महत्व, इसके बारे में विस्तार से हम जरूर जानेंगे कार्यक्रम में आगे। उसके लिए आपको बने रहना होगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत सुल्तान फिल्म से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक श्रोताओं और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब समय है छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओ, इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। 91.2 MHz इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओ, आज है 14 जून, और 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस के रूप में आज के दिन को जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक और नियमित रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही उन रक्तदाताओं को धन्यवाद देना है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्तदान कर अनमोल जीवन बचाते हैं। श्रोताओ, इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती 14 जून 1868 के उपलक्ष में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्लड ग्रुप ABO प्रणाली की खोज की थी। श्रोताओ, इस दिन के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी जानेंगे और भी आपके साथ बातचीत और जानकारियां भी साझा करेंगे। फिलहाल लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको जब वी मेट फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत को गाया है उस्ताद राशिद खान ने। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज के दिन के इतिहास को जानने का, क्या कुछ खास घटा था आज के दिन, आइए जानते हैं। आज के दिन यानी 14 जून 1922 भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक के आसिफ का जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही 14 जून 1928 क्रांतिकारी चे ग्वेरा का जन्म हुआ। इन्होंने क्यूबा की मुक्ति में अपना अहम योगदान दिया था। 14 जून 1905 प्रसिद्ध संगीत साधिका हीराबाई बारोदकर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही श्रोताओं आज ही के दिन 14 जून 1922 फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और 1958 में डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार भी आज ही के दिन दिया गया था। 14 जून 2012 विशाखापत्तनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट से 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि 16 लोग घायल भी हुए थे। साथ ही साथ 1595 आज ही के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1880 की बात करें श्रोताओं तो वैज्ञानिक सतीश चंद्र दास गुप्ता का जन्म भी 14 जून को ही हुआ था। और 1920 14 जून भारतीय अभिनेता भारतीय भूषण का जन्म भी हुआ था। और 14 जून 1967 आदित्य बिरला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो श्रोताओं ये थी आज के दिन की कुछ खास घटनाएं जो आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं इतिहास की जानकारी के बाद आइए अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, बने रहिए श्रोताओं यूं ही और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओं, अब बातचीत करते हैं थोड़ी सी। ज़माना है सोशल मीडिया का और हम सभी लोग सोशल मीडिया का कह सकते हैं सहारा ले रहे हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, चाहे जानकारियां अर्जित करने के लिए, चाहे जानकारियां हम लोगों को देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक चेहरा, एक रूप ऐसा भी है जिसमें कि अच्छी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार बुराइयां या ऐसी चीज़ें जो समाज में अराजकता या बुराई फैलाती हैं, उन चीज़ों को हम बहुत अधिक अपना रहे हैं, उनके फेवर में कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको भी दिखता है आपकी समझ के हिसाब से गलत है, उन्हें हमें भी नकारना चाहिए। किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बच्ची के फेवर में कहने की बजाय लोग उस चीज़ का कुछ अलग ही इशू बना देते हैं और ये बात इतनी घूम फिर रही है कि इसका कोई सलूशन आज दिन तक नहीं निकला है। वहीं दूसरी ओर कॉमेडी शोज़ जो कि हंसी के नाम से शुरू होते हैं, लेकिन वल्गैरिटी इनमें इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इतनी वल्गर बातें करते हैं कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। शो का नाम आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें एक लड़का एक लड़की को बिरयानी खिलाने की बात करता है और कहता है कि जितने की मैंने बिरयानी खिलाई है वो पैसे तो मैं वसूल करूँगा ही। खैर, हमारी बेटियों को भी समझना चाहिए कि आज के दिन में हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे बिरयानी खानी है, चाहे कुछ भी खाना है, अपने ही पैसों से खाएं और इस तरह से किसी के आगे आप इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो कि समाज में अराजकता और मुझे लगता है बुराइयां फैला रही हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा ही ज्ञानवान या विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, तो जो सही ज्ञान है उसे आप अर्जित करें और जिससे समाज में बुराई फैलती है या समाज में कुछ ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे हमें स्वीकार जो है वो नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त बिंदी के साथ। और अब कार्यक्रम में फिर से वक्त है छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज मना रहे हैं विश्व रक्तदान दिवस। इस वर्ष का जो अभियान है उसका विषय है 1 drop of humanity, मानवता की एक बूंद। इसका उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना कि रक्तदान एक ऐसा नेक काम है जिसे मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता और ये किसी भी व्यक्ति के लिए नया जीवन लेकर आता है। श्रोताओं, रक्तदान महादान ऐसा कहा भी जाता है और रक्तदान हमें करना भी चाहिए, और जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं वो दूसरों को एक नया और अनमोल जीवन जो है वो देते हैं। इसीलिए रक्तदान को महादान जो है वो कहा गया है। रक्तदान करने के लाभ क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे जरूर बात करेंगे। और रक्तदान करने से पहले जो हमारे मन में भ्रम भ्रांतियां होती हैं, इन सब को मिटाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारे से श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में 30 से अधिक बार जो है वो रक्तदान किया है। वो श्रोता कौन है, इसके बारे में आपको बने रहना होगा, इसके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना होगा रेडियो गुंजन के साथ, और यूं ही आपको सुनते रहना होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आनंद उठाइए साजन फिल्म के इस प्यारे से गीत का, और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ मिल्कफेड द्वारा पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दूध खरीद व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत प्रदेश में दूध उत्पादन एवं सहकारी व्यवस्था के प्रति पशुपालकों की सहभागिता में निरंतर वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो और भैंस के दूध पर 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति किलो किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ केवल सीमित परिवारों तक न रहकर प्रदेश के अधिकाधिक दूध उत्पादकों विशेषकर छोटे एवं सीमांत पशुपालकों तक पहुंचे। 2 वर्षों में मिल्कफेड में दूध उत्पादकों की भागीदारी 28,645 से बढ़कर 42,500 तक पहुँच गई है। दूध संग्रहण भी 1.57 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2.20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। ये वृद्धि प्रदेश के पशुपालकों के बढ़ते विश्वास एवं दूध के क्षेत्र के विस्तार को दर्शाती है। श्रोताओं ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब श्रोताओं कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सदाबहार नगमा। बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब बात करते हैं फिर से आज के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, आज का दिन यानी 14 जून का दिन और आज के दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और आज का जो ये दिन है, इस दिन रक्तदान करने वाले जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद स्वरूप ये दिन जो है ये मनाया जाता है। और रक्तदान के लाभ के बारे में हमने बात की थी कि क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। श्रोताओ, रक्तदान किए गए, दान किए गए रक्त के एक यूनिट से लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। ये दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और प्रसव के समय बहुत ही आवश्यक होता है। स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान बहुत अच्छा होता है। नियमित रक्तदान करने से शरीर में आयरन का जो स्तर है वो संतुलित रहता है, हमारा हृदय स्वस्थ रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। भारत में विश्व स्तर के अलावा हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये सब जो है लाभ हैं रक्तदान के। जहां हम एक और रक्तदान करने से घबराते हैं, वहीं रक्तदान करने से जो है हमें तो लाभ मिलता ही है, साथ ही उन लोगों को लाभ मिलता है जिनकी हम जान बचाते हैं और एक ऐसी अनमोल ज़िंदगी को बचाए रखते हैं जो इस दुनिया में है और दुनिया से जाने से पहले हमने उसे बचा लिया। तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी हम कह सकते हैं दान और कोई नहीं होगा। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और बता दें आपको श्रोताओं, विश्व रक्तदान दिवस का आज मौका है और आज धर्मशाला से एक बहुत ही प्यारे से श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे जो रेडियो गुंजन के नियमित श्रोता भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने 30 से भी अधिक बार अपने जीवन में जो है वो रक्तदान किया है। कब किया है, किस तरह से किया है और किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया, ये सब कार्यक्रम में हम जानेंगे। उनके साथ हम जुड़ेंगे फ़ोन कॉल के माध्यम से और आप सबको बताएंगे उनकी रक्तदान की जो ये पूरी हम कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी की जो जर्नी है रक्तदान को लेकर के, उसको हम जो है वो साझा करेंगे आपके साथ। उसके लिए आपको बने रहना होगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं आइए चलते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ आज है 14 जून और आज के दिन विश्व भर में मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। और हमारे धर्मशाला के स्थानीय एक हमारे बहुत ही प्यारे से श्रोता हैं जिन्होंने अपने जीवन में 30 से अधिक बार रक्तदान किया है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या है उनका नाम और कैसे इतना बड़ा उत्साह पूर्वक काम जो है वो किया। तो आइए जुड़ते हैं। हेलो, हमारी जो कॉल है वो डिसकनेक्ट हो गई है। और श्रोताओ रक्तदान दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है और थोड़ा सा फ़ोन लाइन में शायद डिस्टर्बेंस आ गई है, उसकी वजह से जो है हमारा संपर्क नहीं बन पाया है। हेलो, हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपको आवाज़ आ रही है
1: जी? आपकी आवाज़ आ रही है जी, क्लियर नहीं आ रही पर
0: जी सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपना नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जी मेरा नाम दीपक जोड़ा है
0: जी, और आप धर्मशाला के रहने वाले हैं
1: जी।
0: और दीपक जी आज विश्व रक्तदान दिवस है और आपने अपने जीवन में हमें पूरे जो एक्यूरेट है वो पता नहीं है कि 30 से अधिक बार आपने दान किया है, तो आप बताएं कि कितनी बार आपने रक्तदान अपने जीवन में किया है
1: जी। हमारा जो है मेरा जो है 39 टाइम्स मैं डोनेशन कर चुका हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है
0: जी,
1: और मेरी संस्था का नाम जो है हिमालयन सेवियर्स ब्लड डोनेशन सोसाइटी है। हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कांगड़ा में हुई थी
0: जी जी,
1: और 16 मार्च 2019 में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी। उससे पहले 2015 से हम ब्लड डोनेशन के काम में जुड़े हुए हैं
0: जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली दीपक जी?
1: जी प्रेरणा तो एक बहुत लंबा है कहानी है। मेरे खुद के जीजा जी को ब्लड की जरूरत थी तो कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा था, तो उस वक्त मैंने ब्लड डोनेशन की थी
0: जी जी।
1: तो चलो जिया जी को तो बचा ना सके, पर उससे मेरे को प्रेरणा मिली है कि रक्तदान करके जो है एक सुकून जो मिलता है
0: जी,
1: वैसा सुकून और कहीं नहीं है
0: जी। बहुत बढ़िया। और दीपक जी बहुत से लोगों में रक्तदान को लेकर के भ्रांतियां होती हैं कि हम अगर स्वस्थ हैं और हम अपना खून दान कर देंगे तो हमें कोई शारीरिक कमजोरी आ जाएगी या हमें कमी हो जाएगी खून की, इस तरह का कुछ रहता है या ये सिर्फ ऐसे भ्रांति है, या क्या बदलाव आते हैं शरीर में रक्तदान के बाद?
1: ये जो है केवल एक मिथ है कि ब्लड डोनेशन से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, ये सिर्फ एक मिथ है
0: जी।
1: हमारा शरीर जो है उस रक्त को मतलब कि 2-3 घंटे में ही बनाना शुरू कर देता है
0: जी,
1: तो इससे कोई बॉडी को कुछ नहीं होता है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि उल्टा आप फ्रेश महसूस करते हैं
0: जी।
1: और एक जी, जो जी जी जी
0: जी जी आप बता रहे थे, कंटिन्यू करें।
1: और जो रक्तदान है करने से क्या है कि हमारे जो शरीर के सेल्स हैं, रक्त के सेल्स हैं, वो नए बनना शुरू होते हैं, पुराने सेल्स जो है निकल जाते हैं, नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इससे जो है जो हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। रक्तदान रेगुलर आप करते रहो, हर 3 महीने बाद रक्तदान देने से जो है हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं, इससे बिल्कुल भी शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती
0: जी। दीपक जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि रक्तदान करने के बाद जो एक आत्मिक सुकून और शांति मिलती है वो किस तरह से आप बयां करेंगे और लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे इसके लिए?
1: जी ऐसा है, रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, जो एक सुकून है
0: जी,
1: जो एक रक्तदान है महादान है
0: जी,
1: ये 100 यज्ञ के बराबर है
0: जी।
1: क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति के आप जीवन दान दे रहे हैं
0: जी,
1: और मैं तो अभी युवा पीढ़ी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ चढ़ के आए। देखिए हमारी संस्था जो है हिमालयन सेवियर्स 2015 से हर साल 23 मार्च शहीदी दिवस वाले दिन जो है एक भव्य रक्तदान शिविर कांगड़ा में लगाती है और इस रक्तदान शिविर में 400 से 500 यूनिट हमारे एकत्रित होते हैं। देखिए उसमें युवा भी है, 65 साल की उम्र के भी हैं और 45 साल की उम्र के भी हैं, 18 साल से फर्स्ट टाइम डोनर्स भी हमारे साथ आते हैं। रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, युवा पीढ़ी आगे बढ़ चढ़ के आए और इस सेवा का जो है सेवा दान करे।
0: जी दीपक जोड़ा जी, आपने इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें रक्तदान के बारे में हमसे की, हमारे श्रोताओं से की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
0: श्रोताओं ये थे दीपक जोड़ा जी जो कि धर्मशाला कोतवाली बाजार से हैं और 39 times 39 बार ये स्वयं रक्तदान जो है वो कर चुके हैं और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये रक्तदान के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत हैं। तो हम सबको भी जैसे कि दीपक जोड़ा ने कहा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, किसी प्रकार की कोई भी थकन जो है वो महसूस नहीं होती, तो आप सब भी अगर आपको कभी लगता है कि आपको रक्तदान करना चाहिए तो आप रक्तदान कर सकते हैं और किसी की अनमोल जिंदगी को बचा सकते हैं। श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोतो, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब फिर से रुक करते हैं श्रोताओं जानकारियों की ओर। आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभिन्न विभागों की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से 15 जून 2026 यानी कल सोमवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि जिला कांगड़ा के विभिन्न उपमंडलों में ये अभ्यास सुबह 9:30 से रात्रि 9:30 तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान संभावित आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं आपदा प्रबंधन तंत्र के बीच समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभ्यास को गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से लें तथा प्रशासन और संबंधित विभागों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास आपदा के समय जन हानि एवं नुकसानों को कम करने तथा प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, ये थी जानकारी, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है फिर से एक और प्यारे से गीत का, तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: थैंक यू किसके लिए? आई होप यू नॉट टू स्लीपी।
1: मुझे रात को नींद नहीं आती।
0: ओके।
1: बोर्न इंसोम्नियाक।
0: हाँ।
1: स्लीपिंग पिल्स बिना सोना इम्पॉसिबल। बट रियली अक्षय, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी।
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं हमारा आज का इस सुहाने सफर का सफर बस यहीं तक था, अब पहुंच गए हैं हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। जी हाँ, और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो गुजरता रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए आपसे इसी वादे के साथ विदा ले रहे हैं कि बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का अंतिम गीत एंजॉय कीजिए, जिंदगी प्यार का गीत है।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार।

0: के, विकास के, जन कल्याण के।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
6: ताला।
5: क्या?
6: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
5: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
6: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ आप सभी के साथ कुछ समय के बाद जो है वो मुलाकात होती रहती है। तो बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने आप को सतर्कता और जागरूकता की ओर लेकर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों तक हर बात पहुंचाते हैं, हर जानकारी पहुंचाते हैं। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ी हूं दोस्तों। और आप सभी को याद होगा कि धर्मशाला

0: जानकारी आप सभी तक पहुंचने वाली है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। और शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस खास बातचीत का। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, हिमानी मैम और प्रतिभा मैम जो है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं। तो आज का जो विषय है बहुत ही खास है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मैम, जैसे आप एनिमल रेस्क्यू टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन की लाइफ पे थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। तो कैसा लगता है आपको, जैसे दिन की सुबह की शुरुआत करते हैं तो क्या रूटीन रहती है, क्या ख्याल सबसे पहले आपके मन में आता है?
1: देखिए, अगर डेली रूटीन की बात करें तो वैसे तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो 9 बजे के बाद ऑन होते हैं, पर हमारी डेली रूटीन में कभी भी विदाउट ब्रेक ही हम लोग काम कर रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब इतने साल से जब आप काम करते हैं इस फील्ड में हैं, तो आपका पर्सनल नंबर भी है हर लोगों के पास, तो लोग छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए कई बार ऐसे कॉल्स कर देते हैं जो ऑफ टाइमिंग होता है। तो हमारी रूटीन वैसा है कि आप अगर सोचें कि हम घर पे भी हैं तब भी हम बिजी ही काउंट होंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई कॉल ना लें या मदद करने की कोशिश ना करें।
0: जी,
1: तो हमारा रूटीन वैसे ही शुरू होता है कॉल्स के साथ ही, और कॉल्स के साथ ही खत्म हो जाता है।
0: जी, हिमानी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ, मैम ने एकदम सही कहा कि काफी सारा, क्योंकि हम लोग शेल्टर वर्क में, मैं मोस्टली हमारा ऑफिस का रूटीन बता सकती हूँ जो कि मैम ने सम अप ऐसे कर ही दिया है कि काफी सारी रेस्क्यूज में हम लोग बिजी रहते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा ऑफिस आके होता है वो ये होता है कि हम सारे जो हमारे शेल्टर डॉग्स हैं उनसे मिले, क्योंकि वो पूरी रात भर अकेले होते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं कि जैसे वो हमें देखे, और वो काफी सब दौड़ दौड़ कर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बेस्ट वर्क प्लेस में आ गए हैं, क्योंकि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। लोग आजकल अपने ऑफिस में एक एक डॉग्स रखते हैं ताकि वो ऐसे काम फील कर सके, और वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास इतने सारे डॉग्स हैं, हम उनसे रहने का मौका मिलता है। फिर वही डेली मीटिंग्स, और फिर सब अपने अपने काम की तरफ बढ़ जाते हैं।
0: जी, तो बहुत ही प्यारा सा अनुभव, बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है। और सचमुच जब हम किसी भी, चाहे इंसानों की बात करें, चाहे हम जानवरों की बात करें, पशुओं की बात करें, तो जब हम लॉन्ग टाइम के लिए जब उनके साथ जुड़ते हैं तो एक फैमिली मेंबर की तरह जो है हमें लगते हैं। और सुबह शाम जब घर पे मन भी नहीं लगता है कई बार, तो ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, यही अपनापन और लगाव जो है, जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा तब तक हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आवारा कुत्ते हों या फिर किसी की भी हम बात कर रहे हैं ना। आजकल तो आपको सड़कों में देखने को मिलेगा आवारा कुत्ते या आवारा पशु जो है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम्स जो है या एक्सीडेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जान को नुकसान पहुंचता है। तो आज का ये हमारा खास विषय दोस्तों, जैसे कि नसबंदी की हम बात करें तो क्यों करानी चाहिए, वैसे हमने आपसे पहले भी बात की, लेकिन एक बार कुछ उसमें चेंजेस है तो वो हम आप सभी तक पहुंचाना चाहेंगे एक अपडेट के साथ, नई जागरूकता के साथ। तो इस बातचीत पे जाने से पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक हो जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। तो प्रतिभा मैम, जैसे कि हम बात मैंने पहले ही कहा कि हम आज की इस खास बातचीत में नसबंदी की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये जानना, एक बार रिमाइंड कराना जरूरी है कि ये नसबंदी होती क्या है।
1: नसबंदी एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जो नसबंदी करने के लिए ट्रेंड है, सर्जरीज करने के लिए ट्रेंड है, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं ताकि वो फर्दर रिप्रोड्यूस ना कर सकें और बच्चे ना दे सकें और जो पॉपुलेशन है वो कहीं एक टाइम के बाद कंट्रोल में आ जाए। तो इस प्रोसीजर को सिर्फ नसबंदी कहते हैं। और नसबंदी जब हम करते हैं तो उसमें हम ARV जो कि एंटी रेबीज वैक्सीन है वो भी देते हैं ताकि उस डॉग को रेबीज से भी सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उस डॉग ने अल्टीमेटली नसबंदी के बाद कम्युनिटी में वापस जाना है
0: जी।
1: और कान जो है उस पे एक वी मार्क बनाते हैं ताकि उस डॉग को दोबारा ना पकड़े और जो लोकल लोग हैं उनको भी इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि इस डॉग की नसबंदी हो चुकी है, ये फर्दर और बच्चे नहीं दे पाएगा
0: जी। तो हिमानी मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे जब आप फील्ड पे जाते हैं तो नसबंदी जरूरी क्यों है? अगर लोग इसके लिए अवेयर नहीं है तो उन्हें अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित क्यों करना चाहिए कि आवारा कुत्तों की जो है नसबंदी, आवारा क्या पालतू कोई भी हो, उनकी नसबंदी कराना जरूरी है?
2: नसबंदी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इकलौता ह्यूमेन तरीका है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का
0: जी।
2: हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए या मुझे और बच्चे नहीं करने हैं, वो बेचारे बोल नहीं सकते, तो उनके बिहाफ में किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो फिर नसबंदी बहुत जरूरी है। और जो रोड के कुत्ते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता। अगर कोई माँ रोड में रहने वाली, अपने उसके चार बच्चे होते हैं, पांच बच्चे होते हैं, उसका भी खुद के खाने का ठिकाना नहीं है तो वो कहाँ से उनका करेगी? और ये लोग बहुत जल्दी हीट में आ जाते हैं, तो ये एक साल में 3 बार भी बच्चे दे सकते हैं
0: जी।
2: अगर वो हर बार 5-5 बच्चे दे रही है तो उसके एक साल में 15 बच्चे हो जाएंगे, और वो 15 बच्चों का कैसे उठाएगी सब कुछ, खाना पीना कैसे करना है, और उसकी खुद की भी हेल्थ खराब होती है। तो हम तो मेन ये सोचते हैं कि जितने कम बच्चे हो, जितनी वो अपनी लंबी लाइफ जी सके, जितनी हेल्दी लाइफ जी सके, वो बेस्ट है। तो बेस्ट है कि वो अकेली रहे हमेशा, और वो ताकि जो उसके फीडर्स भी उसका अच्छे से ध्यान रख पाए, क्योंकि वो खुद भी बाकी डॉग्स का खर्चा नहीं उठा सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो अब हमने ये बात की कि नसबंदी होती क्या है और क्यों ये जरूरी है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम भारत के कानून की बात करें तो भारत के कानून पे नसबंदी का क्या एक नजरिया या किस तरह से ये प्रोसेस आपके सामने आता है?
1: देखिए, जो कानून है वो तो इसी तरीके से फ्रेम्ड है कि आप नसबंदी के लिए जो भी सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, सब फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लोग नसबंदी कर सकते हैं
0: जी।
1: उनको AWBI सर्टिफिकेशन होना चाहिए और नसबंदी के बाद जहाँ से कुत्ता उठाया गया है वहीं पे वापस छोड़ा जाना चाहिए, उसको कहीं और रिलोकेशन नहीं की जा सकती है। लोगों में जो ये भ्रम होता है कि एक बार गाड़ी गई, उसने कुत्ते पकड़े, उनको लगता है कि अब ये कहीं वापस नहीं आएंगे, तो ये वाली जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है। रिलोकेशन जो है वो क्रिमिनल इसमें आता है, आप कुछ भी डॉग को उठा के कहीं और रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस जानवर का जो जहां पैदा हुआ है उसका वहीं रहने का हक है, वो वहीं रहेगा। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके जो नियरेस्ट NGOs हैं, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मदद लीजिए और जितना हो सके आपको लगता है कि आपके आसपास डॉग्स हैं जिनकी नसबंदी की जानी चाहिए, उनकी मदद लेके नसबंदी करवाइए। और पॉपुलेशन जो है वो हमारे में ये भी भ्रम होता है कि आज ले गए कुत्ते, अब ये स्टरलाइज हो गए, अब हमें कुत्ते नहीं दिखेंगे, पर जो ऑर्गेनाइजेशन पकड़ भी रही हैं उनमें से भी अगर आप 90% भी करते हैं तो 10 कुत्ते वहां पे निकल आते हैं जो अनकैचेबल हैं। इसीलिए फीडर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फीडिंग कीजिए, डॉग्स को थोड़ा फ्रेंडली बनाइए ताकि जो ये वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की ड्राइव्स हैं ये इजीली की जा सकें, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और लॉ में कहीं नहीं है कि रिलोकेशन होनी चाहिए या इनको मारा जा सकता है। लॉ स्ट्रिक्टली जो भी है ये बोलता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, हार्म नहीं कर सकते, पॉइजनिंग जो है वो इलीगल है, पर लोगों को लगता है कि पॉपुलेशन घटाने का ये एक तरीका है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, एक तो ये इलीगल है, आपके अगेंस्ट पूरी प्रॉपर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज कि जब आप ये काम करते हैं तो आप फ्रेंडली डॉग्स को वहां से एलिमिनेट कर रहे हो, जिनकी जगह कोई और कुत्ते ले ही लेंगे विद टाइम। तो ये वाला जो प्रोसीजर है जो लोगों को लगता है कि फॉलो कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो नसबंदी इकलौता इस चीज का उपाय है कि विद टाइम, समय के साथ साथ कुछ सालों में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी और जहां नए बच्चे नहीं दिख रहे हैं उसका मतलब है कि वहां पे काम हो रहा है। पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, तो लोगों को थोड़ी पेशेंस उस तरीके से रखनी पड़ेगी।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों अक्सर हम इस बात से परेशान तो हो ही जाते हैं, किसी की भी बात करें, चाहे आवारा कुत्ते घर के आसपास, हर किसी के घर के आसपास होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहां पर हमें देखने को मिलते हैं, हर कहीं होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कि आजकल ब्रीड्स के होते हैं उन्हें ज्यादा लाड प्यार देते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हम उन्हें मारते हैं पीटते हैं। जब हम कहते हैं ना कि जब बेवजह जब पूरा दिन चलते रहें आपके घर के आसपास तो आप परेशान हो जाते हैं, तब आप उन्हें मारना शुरू कर देते हैं या आप उन्हें कहीं और छोड़ आते हैं, तो वो एक तरह से गलत है। और क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो जी में आए हम वो करें। तो हम इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए जहां ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं वहां हम ये नसबंदी जो है वो करवा सकते हैं। उनके एक फैमिली मेंबर ही बन चुके होते हैं, वो काफी टाइम से वहां रह रहे होते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस तो होते नहीं है मेरे आईडी से।
1: नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो हम चैरिटी हैं, मतलब ऐसे तो हम फंडिंग लोगों की, जो लोग डोनेशंस करते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं
0: जी,
1: बट स्टिल हर कोई कैपेबल नहीं है। इसलिए हम जब नसबंदी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उस चीज को कि अगर एक बार नसबंदी करके लोगों की ये सोच बदल जाए कि हाँ अब इसको खाना खिलाना मुझे सेफ लगता है, क्योंकि ये नसबंदी करवा के आया है, इसको हर साल वैक्सीनेशन मिल रही है। क्योंकि हम सिर्फ नसबंदी नहीं कर रहे हैं, हम हर साल ये भी इंश्योर करते हैं कि उसको जो रेबीज का टीका है वो भी लगे
0: जी।
1: तो जब फीडर्स इन्वॉल्व रहते हैं तो एक ये चीज होती है कि जब वो कुत्ता आपकी कम्युनिटी में घूम भी रहा है, एक तो उसकी नसबंदी हो गई, वो पॉपुलेशन बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा, दूसरी चीज उसको रेबीज का टीका लग रहा है, तो उससे वो खुद भी सेफ है
0: जी।
1: और कम्युनिटी में भी रेबीज जैसी बीमारी फैलाने के चांसेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
0: तो ये रेबीज की बीमारी जो है सिर्फ ये आवारा स्ट्रीट डॉग से ही फैलती है या फिर किसी के उससे भी फैल सकती है, जो हम घर पे रखते हैं?
1: बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं
0: जी
1: जो इस बीमारी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि चमगादड़ और बंदर से भी कई बार रेबीज फैलता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे डॉग्स हर कोई रेबिड नहीं होता है, वैसे ही इनमें चांसेस जरूर हैं कि ये फैला सकते हैं, बट ये नहीं है कि ये इकलौते ही कैरियर हैं और ये बस अब रेबीज ही फैलाएंगे। तो वो हमारी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रे डॉग जो बाहर घूम रहा है गली में उसको रेबीज होगा और घर पे जो कुत्ता रखा है उसको नहीं होगा। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो स्ट्रे हो चाहे वो घर पे रहने वाला पेट डॉग हो
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से जो है हमें इनके लिए भी थोड़ा अपनी तरफ से योगदान देना जरूरी होता है। तो जैसे हम अपने घर पे रखते हैं डॉग्स को, उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका भी अगर हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत अगर उनका ध्यान रखें तो उन्हें भी अपनापन मिलता है और वो एक बहुत ही, और कहते हैं ना कि कुत्तों की हम बात करें तो बहुत ईमानदारी के साथ जो है वो अपना योगदान देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों और भी हम बात करेंगे, एबीसी एक्ट की हम बात करेंगे, इस पे जानेंगे कुछ चेंजेस उसमें अभी हुए हैं 2023 में भी, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं और किस तरह से हमें उन चेंजेस को फॉलो करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस जुड़ते हैं अपनी इस खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज की ये खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं हिमानी मैम और प्रतिभा मैम। तो आइए अपनी इस खास बातचीत को जो कि हम कर रहे हैं कि जो डॉग्स हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन क्यों जरूरी है और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी बातें ध्यान नहीं रखनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो ABC रूल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है, कौन कौन सी बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
1: सो ABC रूल जो है वो है ए एनिमल, बी बर्थ, सी कंट्रोल। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है तो उन्होंने कुछ चीजें ध्यान में रखने को बोली है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे ऊपर आता है और उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट यही बोला है कि चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी अपार्टमेंट्स की सोसाइटी हो, कोई भी वेलफेयर सोसाइटी हो या फिर कोई भी NGO ही भले क्यों ना हो, हम अपने हिसाब से ABC रूल को चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा है हम सबको वही फॉलो करना है। उसके हिसाब से क्या होना है कि जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिनको हम इंडीज बोलते हैं, उन सबकी स्टेरिलाइजेशन, नजबंदी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जिस जगह से उठा रहे हैं हम उनको वहीं पे ड्रॉप करें। उनका रिलोकेशन अलाउड नहीं है। अगर कल के दिन कोई सोसाइटी ऐसा बोलती है कि ये डॉग्स को यहाँ से ले जाओ और कहीं और रख दो तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और रिलोकेशन के साथ साथ ये उन्होंने सारे स्टेट्स को ये चीजें करने के लिए बोली है कि सब हर जिले में अब एक ABC सेंटर होना चाहिए। तो इसमें हम अभी बहुत पीछे हैं, बट होपफुली सारे जिले इस बारे में काम करेंगे, सरकार, राज्य सरकार अगर काम करेंगी तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें सर्जरी करने के लिए ABC सेंटर चाहिए, हर जगह NGOs नहीं पहुंच सकती है। या तो आप NGOs को सपोर्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो सरकारी तौर पर आप इन्वॉल्व कर

0: सकते हैं कि हर एक जिले में एबीसी सेंटर हो, प्रॉपर वेट हो, क्योंकि हर कोई सर्जरी नहीं कर सकता।
1: जी
0: रजिस्टर्ड वेट चाहिए उसके लिए, ट्रेन्ड वेट्स चाहिए, पूरे सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी दवाइयों की फैसिलिटीज, डॉग्स की फीडिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका पोस्ट ऑप केयर में आपको ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद उनको ठीक से सही सलामत उनकी जगह पे वापस छोड़ देना है। और कोई भी मना नहीं कर सकते कि अब इनको यहाँ मत रखो, ये डॉग्स का अधिकार है, जितनी हमारी ये दुनिया है उतनी ही दुनिया उनकी भी है।
1: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। रूल्स तो हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी रूल से भटक गए तो जिंदगी पूरी भटक जाती है। तो उसी तरह से डॉग्स के लिए भी है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैम, जैसे कि हम नसबंदी की बात करें, तो इसके लिए जैसे अभी मैम ने कहा कि ये बातें जो है हमें
0: जी
1: ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ इसमें नसबंदी से जो डॉग्स को क्या फायदा मिलता है, क्या उनको लाभ होता है, या क्या उनको, लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि इसके करके शायद हमारे डॉग्स को कोई नुकसान ना पहुंच जाए,
0: जी
1: कोई प्रॉब्लम ना हो जाए नसबंदी के बाद, या किस तरह से ये होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताएं कि क्यों ये फायदेमंद है।
0: देखिए, नसबंदी आप चाहे मेल ले लो चाहे फीमेल ले लो, दोनों की ही फायदेमंद होती है।
1: जी
0: पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को लगता है कि मेरे पास तो मेल डॉग है, उसकी नसबंदी करा के क्या फायदा।
1: जी
0: ऐसा ये सिर्फ भ्रम होता है। एक बार नसबंदी कराएंगे तो, एक तो जब मेटिंग सीजन आता है, तो अगर कोई फीमेल है जो आसपास आपके रह रही है, अभी तक स्टरलाइज नहीं है, जब वो हीट में आएगी तो आसपास के सब डॉग्स को वो फेरोमोन्स का अलार्म टाइप सिस्टम हो जाता है कि इनको पता लग जाता है कौन सी फीमेल हीट में है, तो ये मेटिंग के लिए लड़ते हैं। तब चाहे वो घर का कुत्ता भी है, उसमें भी थोड़ा एग्रेशन आ जाता है क्योंकि वो अंदर नहीं रहना चाह रहा है, वो भाग रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो नसबंदी करवा के कम हो जाती हैं। सेम फीमेल्स के लिए है, वो मेट नहीं करेगी, बच्चे नहीं देगी। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरी चीज़ होती है जो इनमें मेमोरी ट्यूमर आते हैं और सूडो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, कि लोग ये शिकायत भी होती है लोगों को कि ये मेट तो नहीं हुई पर इसके मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं या इनमें मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। वो सब हार्मोनल होता है। वो मेट तो नहीं हुई पर उसकी बॉडी सूडो प्रेगनेंसी, मतलब उसकी बॉडी को लगा है वो प्रेग्नेंट है, तो सब सिम्टम्स वो ऐसे देगी, और इवेंचुअली ये सब करने से उनको और बीमारियों के खतरा होता है। तो उस सब का भी एक सोल्यूशन यही है कि आपने अगर टाइमली नसबंदी कराई है तो वो नहीं होगा। तीसरी चीज़ होती है, एक जब आप मेटिंग करा रहे हो डॉग की, आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, हो सकता है इनमें एक्टिविटी आता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जब वो मेट हुए तो वो आपकी फीमेल को नहीं था या आपके मेल को नहीं था, पर दोनों में से किसी एक को होगा, तो वो ट्रांसमिट हो गया, और उसका फिर इलाज होता है कीमोथेरेपी। तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सिर्फ स्टरलाइजेशन कराइए, पॉपुलेशन तो घटेगी ही, साथ में बीमारियों से नियंत्रण होता है, और इनकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखते हैं। जो भी डॉग्स आपने देखे होंगे जो रेगुलर स्टरलाइज नहीं है, रेगुलर मेटिंग करवा रहे हैं, वो बहुत ही कमजोर और उस तरीके के दिखते हैं, जबकि एक स्टरलाइज डॉग हमेशा हेल्दी दिखने वाला होता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं इसमें, और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स हैं वो तो पता ही लग जाते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे तो, क्योंकि अगर आपने घर पे भी फीमेल रखी है, उसने मेटिंग कर ली, प्रेग्नेंट हो गई, 6 बच्चे दे दिए, आप उन बच्चों का क्या करोगे? बहुत ही कम चांसेस में वो अडॉप्ट होते हैं। फीमेल डॉग्स अडॉप्ट नहीं होंगी तो फिर वो गलत काम करने के लिए आप भी कहीं ना कहीं हो जाते हो कि आप कहीं छोड़ आओगे उनको, जो कि गलत है, या कहीं बाहर रख दोगे, वो भी गलत है, और उन बच्चों का फ्यूचर तो कुछ रहेगा ही नहीं, साथ में उस फीमेल की भी हेल्थ खराब हो रही है। तो स्टरलाइजेशन इसका इकलौता उपाय होता है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये करा लेनी चाहिए। और कई लोगों में ये भ्रम होता है कि एक बार बच्चे तो होने ही चाहिए,
1: जी
0: जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली उसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। हमने अपने डॉग्स की स्टरलाइजेशन फर्स्ट हीट से पहले ही करा दिए शायद, पर वो इक्वली हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रम है। राइट एज होनी चाहिए, जो कि 8 महीने से ऊपर किसी की भी हो सकती है, और एक राइट वेट होना चाहिए कि वो बहुत कमजोर नहीं है, 8 किलो भार अगर उसका है और वो 6 महीने से ऊपर है, 8 महीने से ऊपर है, तो उसकी नसबंदी की जा
1: की जा
0: सकती है।
1: सकती है। जी तो मैम, अब हम बात करें जो ये एबीसी रूल्स के अकॉर्डिंग,
0: जी
1: तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें डॉग्स के साथ नहीं करनी चाहिए, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक तरह से हम इलीगल कह सकते हैं, तो कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा उसमें, एज अ मतलब कि सोसाइटी या एज
0: जी
1: अ कैन किसी का भी हम रोल की बात करें तो किस तरह से ये जो है रहने वाला है?
0: जी देखिए, जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग भी है और एक मतलब प्रॉपर लॉ भी है इसके अगेंस्ट, पहली तो चीज होती है कि आप मारेंगे नहीं उसको।
1: जी
0: कुत्तों को देख के डरना एक फोबिया के अंडर आता है कि ठीक है आपको कुत्ते से डर लगता है।
1: जी
0: अपने डर को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप छोटे से बिस्किट से शुरुआत कीजिए तो वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, आपको नहीं काटेगा। पर अपने डर के मारे ये सोसाइटी में ये वाली भ्रांतियां फैलाना कि वो एग्रेसिव है, वो काटता है, वो काट रहा है, ऐसे कॉल्स आते हैं हमें। और उस कॉल्स के चलते क्या होता है कि आपने 10 लोगों को ये बात बोली, 10 में से 8 सेम थिंकिंग के हैं, वो डर गए। अब आप सबकी मेंटेलिटी बन गई कि आप उसको हार्म करेंगे, डंडा मारेंगे, या आपने कुछ प्लान कर लिया। वो सब जो है वो इलीगल है। और सोसाइटी में भी लोगों को चाहिए कि अगर कुछ ऐसा होता देखते हैं किसी जानवर के साथ कि कोई उबलता पानी फेंक रहा है या कुछ उसको उठाने के लिए डंडा पत्थर मार रहा है, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी और प्रूफ इकट्ठा करके आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है, बट आपके पास प्रूफ होने चाहिए। एक तो ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है। दूसरी चीज़ है रिलोकेशन, जो कि बहुत लोग कॉल करते हैं कि इनको उठा के यहाँ से वहाँ रखाते हैं, आप रख दीजिए, आप कर दीजिए। ये बिल्कुल इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है। जो कुत्ता जहाँ पैदा हुआ वहीं रहेगा अपनी पूरी ज़िंदगी। अगर आपको लग रहा है कि वो एग्रेशन उसमें आ रहा है, तो वो एग्रेशन किस वजह से है उसका मेन रूट कॉज पता करने की कोशिश कीजिए। पर ये झूठ और ये सब फैलाना, इससे क्या होता है जानवर की भी जो ज़िंदगी है वो एक रिस्क पर डाल रहे हैं आप, और अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके डर के कारण आप उसको मारेंगे, अपने बचाव के लिए वो आपको काट लेगा। फिर अगर आप दोबारा जाके एनिमल को ब्लेम करेंगे कि उसने मुझे काटा, तो उसकी शुरुआत तो आपने
1: खुद की है।
0: तो ये सब चीज़ें जैसे उसको मारना, पॉइजनिंग करना, रिलोकेशन, ये सब क्रिमिनल एक्ट्स के अंडर आता है। इनको आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। द ओनली वे जो आप फॉलो कर सकते हैं वो यही है कि नसबंदी कराइए, साल दर साल आप उसको रेबीज का टीकाकरण करवाइए। और जितने भी डॉग्स आप देखेंगे ना कि जिनके मल्टीपल फीडर्स हैं, और जो डॉग्स स्टरलाइज से एक टाइम पे अब और बच्चे नहीं देते हैं, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। उनका मतलब सिर्फ खाने और सोने तक ही रह गया है। अब डॉग अगर लड़ता भी है तो हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अगर एक रिसोर्स के लिए 10 लोग लड़ेंगे तो वो तो हमारे जैसा सेम ही है ना।
1: जी
0: अगर कोई एक चीज है जब हमें पता है कि एक कोई मिलेगी और 10 लोग लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ झगड़ा होना तो जायज ही है। तो सेम डॉग्स में है, अगर एक रोटी के लिए कॉम्पिटिशन होगा तो लड़ाइयाँ होंगी ही
1: होंगी।
0: तो वो हमें न्यूसेंस लगेंगी, इसलिए बेटर है उसकी रोकथाम के लिए नसबंदी करवाइए ताकि ये सब सिचुएशंस पैदा ही ना हो।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जब पहले से ही सावधानी बरती जाए तो प्रॉब्लम्स खड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बहुत ही ये खास जानकारी आप सभी जान रहे हैं, और अपने आप को उम्मीद करते हैं कि जरूर अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और सतर्कता की ओर लेकर जाएंगे। तो अपने आसपास के डॉग्स के लिए ये ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा तो काम है आप सभी तक कुछ खास बातें पहुंचाना। और हम इसी उम्मीद से आप सभी के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, जिससे कि आप जो है छोटी छोटी सी बातों को ध्यान दें जो कि हमारी डेली रूटीन और जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि इन बातों में थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा गंभीरता जो है वो हो जाएगी। तो एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। मैम, क्यों ना आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गीत हो जाए, आप दोनों में से किसी एक की।
0: तुम ही हो सॉन्ग आशिकी टू का।
1: जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, मैम की फरमाइश में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। और जानकारियों का जो है ना, ये फ्लो इस तरह से बना होता है कि हमें तो मन करता है कि कुछ छूटे ना बस आप सभी तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ जुड़कर, और सबसे खास बात अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और मैम, जैसे कि हम नसबंदी की बात कर रहे हैं आज के इस खास बातचीत पे, तो जो हम अभी रूल्स की बात कर रहे थे, तो अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में, जरूरी नहीं है कि डॉग्स की ही हम बात करें, जब भी हमारी सोसाइटी में कोई अननोन पर्सन आ जाते हैं या कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ही आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है, क्यों आए हैं, किस तरह से, पर अंदर से एक हिचकिचाहट होती है कि हम पूछेंगे तो कहीं बवाल ना हो जाए, कोई हमें टारगेट ना करे या कोई कुछ बोल ना दे, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है, जो सोसाइटी के लोगों के क्या राइट्स रहते हैं अगर कोई जाने अनजाने में एकदम से हमारी सोसाइटी के अंडर आ गया और डॉग्स को उठा के लेकर जा रहा है या बिना किसी को बताए नसबंदी कर रहे हैं, तो उसके अंडर एक आम लोगों के क्या रूल जो है राइट्स रहते हैं, क्या उनके लिए प्रोसेस रहता है।
1: सो अगर आप जागरूक जनता है और आप जानना चाहते हैं कि अगर कुत्ते उठाने वाले आए हैं और वो कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका हक बनता है कि कुछ क्वेश्चन आप उनसे जरूर पूछे। आप उनसे पूछे कि वो कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी में लेकर जा रहे हैं, क्या उनको ये करने की परमिशन है भी या नहीं भी है, वो कुत्ता कब लाएंगे, कब वहां छोड़ देंगे। और बिल्कुल आप उनसे पूछिए कि वो कहीं रिलोकेशन के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं। कुछ ऐसा ना हो कि वो लोग नजबंदी के लिए आए ही ना हो, वो लोग रिलोकेशन के लिए आए हो। तो एज एन अवेयर जनता आप ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं इन सब चीजों का, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। जैसे मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप फोटोज ले सकते हैं, आप वीडियोज ले सकते हैं, आप कोशिश करिए कि लोकेशन आप ट्रैक करें, ट्रैक इन द सेंस कि अगर इस लोकेशन से ले गए हैं तो आप नोट कर ले कि वो उन्होंने यहाँ से कुत्ता उठाया, क्योंकि लास्ट में एविडेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो केस आगे बढ़ रहा है, हम ले जा रहे हैं कोर्ट में, तो ये सारे प्रूफ जो है वहाँ बहुत हेल्प करेगा। तो हाँ, अगर आपको सच में कुत्ते पसंद है तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स और करनी पड़ेंगी कि उनकी नसबंदी ठीक से हो जाए और वो ठीक से वापस आ जाए।
0: जी, तो ये तो हमने जाना कि नसबंदी किस तरह से होती है, क्यों जरूरी होती है, और जो रूल्स अभी चेंज हुए हैं उसके अंडर हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या राइट्स हैं। तो अब मैं ये बात करूं कि जैसे आप फील्ड में काम करते हैं, आप जो है अपने उधर डॉग्स को रखते हैं शेल्टर में, तो क्या आप जो है, आप पहले भी आपने कैंप के लिए जो है लोगों के साथ जुड़े थे, तो आपका जो ये कैंप रहता है नसबंदी का ही, या फिर आप नसबंदी के लिए जब फील्ड में आते हैं, तो ये कब और किस तरह से रहता है?
1: हाँ, तो हम लोग साल में 3 कैंप करते हैं, जिसमें से 2 एबीसी के कैंप होते हैं, जिसमें हम 2 कैंप्स में नसबंदी करते हैं। पूरे दोनों कैंप्स एक एक महीने के चलते हैं, और जो तीसरा हमारा कैंप होता है वो है एआरवी, क्योंकि नसबंदी के साथ में वैक्सीन लगाना एंटी रेबीज की भी बहुत जरूरी है। तो एक हमारा ऑलरेडी हो चुका है अप्रैल में, अगला हमारा अब एआरवी का कैंप होगा जो हम सेप्टेम्बर में करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नवम्बर के अराउंड हम लोग अपना एबीसी का कैंप करेंगे, सर्जरी का। हम इसमें कोशिश करते हैं कि धर्मशाला और आसपास के एरिया के जितने मैक्सिमम कुत्ते हो सके हम उनकी नसबंदी कर लें, और इसमें फीडर्स की बहुत हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी टीम एक लिमिटेड अमाउंट के कुत्ते ही पकड़ पाती है, या वो हमारी गाड़ी को देखते ही भाग जाते हैं। तो अगर आप अच्छे फीडर्स हैं और कुत्ते आपके आसपास आपके पास आते हैं, तो हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप कुत्ते को बांध लीजिए, ताकि हमारी टीम आए और उनको इजीली ले जाए और थोड़ा हमें भी आसानी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कुत्ते छूट जाते हैं, तो वो छूटे ना, तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो वो बहुत इजीली ये हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो हमें जानते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें देखकर वो या तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, और उसी एग्रेसिव के चक्कर में हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं हमें काट ना ले और हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं है, बस अपनी भावनाओं को ऐसे ही झलकाते हैं जो कि हमें समझनी होती है। तो मैम, जैसे आप फील्ड में काम करते हैं, तो आपको किस तरह से जो है चैलेंजेस अभी भी आते हैं क्या?
1: चैलेंजेस तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी टाइम से काम कर रहे हो, चैलेंजेस कब कुछ ना कुछ हमेशा रहते ही हैं। जो मेजर चैलेंज है वो यही है कि जैसे अब हम सिर्फ जब डॉग पकड़ने जाते हैं, नसबंदी की बात ले लीजिए, उसके अलावा हम रेस्क्यू भी करते हैं, पर जैसे हम नसबंदी कर रहे हैं उसके लिए हमें कुत्ते पकड़ने पड़ेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि हमें सेफ्टी अपनी भी देखनी है प्लस टीम की भी देखनी है, और जिनको पकड़ने के लिए ला रहे हैं प्लस बंदी करने के लिए उनकी भी देखनी है
0: जी।
1: अब कुत्ता भरी ट्रैफिक में 10 बजे अगर टीम निकलती है, कुत्ता डर के मारे भागेगा, गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, हो सकता है वो किसी गाड़ी की चपेट में आ जाए, हो सकता है हमारा कोई टीम मेंबर ही गाड़ी की चपेट में आ जाए उसको पकड़ने के चक्कर। तो ये चीजें अब हमारा ये रहता है कि हम 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ये काम करें, जो कि हम वैसे ही करते हैं। अभी उस टाइम कई लोग अपने घरों में ही होते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि हम लोग आए कुत्ता पकड़ा ले गए, और हेल्प तो ऑब्वियस है उस टाइम नहीं हो रही
0: जी।
1: तो जब हम वापस छोड़ने जाते हैं उनको पोस्ट ऑपरेशन सब केयर के बाद, तो मेजर चैलेंज यही रहता है कि यहाँ से कब पकड़ा। हालांकि हमारे पास सब रिकॉर्ड्स होते हैं पर लोग मानने को तैयार नहीं कि वहां पर मत छोड़ो। एक और मेजर चैलेंज ये है कि पकड़वाने में बड़ी फुर्ती दिखा देंगे कि हाँ पकड़ लो, जैसे कुत्ता गाड़ी के अंदर गया वापस नहीं छोड़ना है, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो चीज जब लीगली ही नहीं है तो हम लोग भी तो बंधे हुए हैं
0: जी।
1: हम भी वही काम कर सकते हैं जो लीगल दायरे के अंदर आता है, तो वो लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जो और एक मेजर चैलेंज वो ये भी है कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं जैसे ही कॉल आया 10 मिनट में हमें वहां पे हाजिर होना चाहिए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हमारी टीम बहुत छोटी है, हम फिर भी पूरी कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंचे, पर हो सकता है कि रेस्क्यू के लिए जब आपने कॉल किया उससे पहले किसी और का कॉल आया, वो भी इमरजेंसी हो, तो टीम उसके लिए निकली है, तो जो पहले कॉल आया था उसको उठाने के बाद ही दूसरे तक पहुंचेंगे
0: जी।
1: तो लोग कोऑपरेट करने की बजाय

0: है, कई बार हमें बहुत बुरी बातें बोलते हैं जो हमें भी ऐसा लगता है कि एक हेल्प जो सोसाइटी की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं है, पर सामने से जो है वो नेगेटिव सा फीडबैक आता है, तो हमें भी कई बार डिसहार्टनिंग लगता है कि यार इतना करने के बाद भी ऐसा हमको रिस्पॉन्स मिलता है। वो हमें समझ आ जाती है कि चलो ठीक है, आपने देखा कुत्ता घायल है, आप इमिडिएटली हेल्प करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग दूसरे एंड पे काम कर रहे हैं, जो कि हम हैं, वो भी इंसान ही हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच में से ही आते हैं।
1: जी
0: हमें भी कोई वैसी पावर्स नहीं है, कोई उस तरह की ट्रेनिंग हमने भी नहीं ली थी, ये विद टाइम और ट्रेनिंग्स है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बट सोसाइटी का जो हेल्प और सपोर्ट है वो हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, चाहे
1: बिल्कुल
0: हम कितना भी काम करें।
1: जी
0: ये मेजर सिर्फ ड्रॉबैक्स रहते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा मैम ने कि सोसाइटी का जो है सहयोग खासकर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे ये जो है आपके वहां के, चाहे कुत्तों को पकड़ने की बात है, चाहे उनकी वैक्सीनेशन की बात है, चाहे उनकी नसबंदी की बात है, क्योंकि ये उनके लिए अननोन है और आप उनके लिए नॉन है, तो अगर आप उनके लिए हेल्प और सिर्फ ले जाने में हेल्प करें, वापिस लाने में तो ये भी गलत बात है। तो हमें हर चीज को समझना चाहिए और इंसानियत होने के नाते हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैम, आप जैसे अगर कोई आपसे बात करना चाहे, कोई भी अगर जानकारी देना चाहे या कोई
0: जी,
1: हेल्प आपसे लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं?
0: हमारा जो शेल्टर है वो रक्कड़ रोड पे है, स्लेट गोदाम रोड पे।
1: जी
0: आप अगर विजिट करना चाहें तो गूगल मैप्स पे आप डाल सकते हैं और आपको इजीली पहुंचने में हेल्प हो जाएगी।
1: जी
0: हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि 9882858631। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ये 9 to 5 ऑल वर्किंग डेज पे ओपन होता है,
1: जी
0: और इस पे आप अपने विजिट का टाइम भी बता सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि हमारे कैंप्स कब लग रहे हैं या गाड़ी कब आएगी या कोई रेस्क्यू रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसी सेम नंबर पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: जी तो बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई है, और हर किसी का समय अपने अपने लिए कीमती होता है अपनी अपनी जिंदगी में, फिर भी हम जो है समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए अपना योगदान देते हैं, तो लोगों से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो भी हमें कॉपरेट करे। बस इतनी सी बात होती है, ज्यादा तो कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहे, कोई आपका टाइम नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा कॉपरेशन ही मांग रहे हैं, और शायद आपके कॉपरेशन से जो है किसी की जिंदगी संवर जाए, क्योंकि कुत्तों में भी जान तो होती ही है
0: बिल्कुल
1: ऑब्वियसली, तो उनके भी कुछ इमोशंस होते हैं, तो अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी अपनापन देंगे, वो पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ आपके जो है हर सुख दुख में साथ देंगे, इतना उन पे विश्वास किया जाता है। तो इस बहुत ही खास जानकारी के साथ अब थोड़ा सा समय हो गया है हमारा दोस्तों से अलविदा लेने का, तो जाने से पहले आप क्या मैसेज जो है सोसाइटी के लोगों को देना चाहेंगे नसबंदी से संबंधित, आपका क्या कहना है लोगों के लिए?
0: सो जाने से पहले हम यही कहेंगे कि आपको, आप प्लीज नसबंदी करवाइए, हमसे कांटेक्ट करिए या फिर नियरेस्ट जो भी आपके पास एनजीओ है वहां कांटेक्ट करिए। आप फीडिंग जरूर करवाइए डॉग्स की, जिस जगह में फीडिंग करवा रहे हैं उस जगह को प्लीज क्लीन करिए, क्योंकि ये भी एक कंप्लेन आती है। और डॉग्स की वैक्सीनेशन का, स्टेरिलाइजेशन का पूरा ध्यान दे। और जाने से पहले मैसेज, थैंक यू सो मच रुचिका, और हम यहाँ आज चौथी बार आए हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, एंड होपफुली हम आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।
1: जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी, बस नसबंदी से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो थोड़ा सा अवेयर रहिए कि जब हम लोग कैंप लगा रहे हैं, आप उस टाइम पे आप हमारी हेल्पलाइन पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और आप तक हम जरूर पहुंचेंगे। और ये जो भी आपको लगता है इमिडिएट सोल्यूशन तो हम भी नहीं दे पाएंगे, पर हाँ, आने वाले कुछ सालों में अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और हम इसी पेस पे काम करते रहते हैं, तो आई एम श्योर कि जो धर्मशाला की पॉपुलेशन है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जो भी लोगों को कुत्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कई लोगों को नहीं पसंद हैं डॉग्स, तो जब आपको कम दिखेंगे तो लड़ाई झगड़े आपस में भी कम होंगे, जो कम्युनिटीज में भी आपस में प्यार बना रहेगा, और डॉग्स भी जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी जिएंगे।
1: जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो मंजन धर्मशाला के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत में आप सभी ने जाना कि नसबंदी क्यों जरूरी है और क्या क्या चेंजेस अभी हुए हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो एक इंसान होने के नाते सिर्फ किसी के साथ गलत करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छाई भी हम सभी के अंदर कूट कूट के भरी है लेकिन हमें दिखती नहीं है, वो अलग बात है। तो जरूर दोस्तों जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर घर पे आपने रखे हैं जैसे उनकी केयर करते वैसे ही बाकी डॉग्स की भी केयर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और अब समय है समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी का ये ढेर सारा मनोरंजन इसी तरह से जारी रहेगा।
1: अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तू हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हो यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम च तू हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तू हाँ सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने दा काम कार है से जरूर करा दे उन्हें न कने इंतजार तो जो लग्या था कि कालू दिया दो बजते न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न ता इंतजार दी जेड़ा घड़ी है से तो हाँ वास्ते बिल्कुल ख़त्म है कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तो हाँ तक रहा है दो ते तीन बजे तक तो कार्यक्रम जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर

हाँ जेड़ा काम मैं से सोची उन्दे काम का आ रहा हूँ किस प्रकार करना या अपनी जेड़ा छुट्टी है से किस प्रकार जेड़ा इंजॉय है से करना। तो आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करनी है कि छुट्टी जो वहाँ इंजॉय किस प्रकार करी सकते कने अपने मोबाइल फोन ते दूरी जेड़ा से किस प्रकार रखी सकते, क्योंकि संडे का जेड़ा दिन है से यहाँ जो हमेशा ये सिखाते हैं कि अपने कन्ने अहाँ अपने जेड़ा काम कार हैं से किस प्रकार करने कन्ने अपना जेड़ा समय है से अपने जो देन। तो ज़रूर तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गल बात जेड़ा है से ज़रूर करी सकते। दर्शकों तो हाँ सारे जो पता है कि कार्यक्रम च शुरुआत जेड़ा है से अहाँ एक प्यारे दे गीत कन्ने कर देन कन्ने अहाँ दे जेड़ा श्रोता ने सभी इंतजार पर होंगे कि कालू दिया गीत संगीत अहाँ तीना तक पहुँचा देना कने सह गीत संगीत का इंजॉय लैन देना। तो श्रोताओं इसी कने अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से कर देना, फिरी बाकी दिया जेड़ा गल्ला बातें ने से तुहान ले करी आन देना। तो ये गीत तुहां तक अहाँ पहुँचा देना, तुहां सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा कने इसी कने रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने 2 ते 3 बजे तक जरूर तो हैं इस सफर कन्ने जुड़ा हम सफर जड़े से बना। तो चल देना सुन देना इस प्यारे दे गीत जो।

0: माटी दी महक कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो हाँ सारे ही सुनया ये गीत कन्ने फिर यहाँ वापिस आई हो अपनी गलबात ऊपर। दर्शो तो हाँ भी मेरी गलबात कन्ने जरूर जुड़िया कन्ने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा सफर तो हाँ तक रहा है से रहा है 2 से 3 बजे तक। कन्ने अहाँ जोड़ा अगले पहले श्रोता अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दे तिना कन्ने गल बात। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक ठाक है
0: जी। तुह कुछ ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी? जी कांगड़े ते
1: स्वर्णा मेरा नाम।
0: जी स्वर्णा जी क्या काम कार लग गया तुहा क्या करा दे आज?
1: आज काम कार कुछ नहीं लगा बीमार हो गई
0: जी। अच्छा बीमार हुई क्या हुई है जी? तो है
1: शुगर बढ़ गई हो
0: जी। ता शुगर दा अपना भी ख्याल रखना है कने क्योंकि शुगर एकदम बढ़ जाती ना जी। जी जी तो अपने जी जड़े से करना पौना ना जी दी परता शुगर पर
1: जी करते करते बढ़िया जी। ता
0: जी अच्छा अपने करते करते भी बढ़िया दी
1: जी।
0: अच्छा जी तो और घर सारे ठीक ठाक है ना?
1: जी ठीक ठाक ना
0: जी। नोईता जी कांगड़े दा मौसम क्या बोला दा आज?
1: धूप लगी है बड़ी शैल है
0: जी। आज धूप लगी हो कने कल तो बड़ी ज्यादा बरखा हुई ना जी?
1: हाँ जी बड़ी बार बरखा हुई।
0: जी जी जी तो स्वर्णा जी और नोईता जी
1: नोईता जी तो और क्या है ये सब प्राणी है ना
0: जी। तो गर्मी कितनी की है आज कांगड़े?
1: बड़ी बड़ी गर्मी लगा दी
0: जी। बरखा का एहसास नहीं होता कि बरखा हुई है ना जी। जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद कर गए जी।
1: आज गीत सुनना मैं तक तो सोना मत दरबार नत दिया कुद दिया जाना है
0: जी। कुंदिया गीत सुनने तो हाँ
1: तब तो माता सोना दरबार नचदिया कूददिया जाना।
0: जी जी अच्छा जी जरूर है भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा।
1: धन्यवाद पूरे सुनाने पर
0: जी पूरे ही सुनाने जी तो हाँ तक।
1: थैंक यू
0: जी। ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक। दर्शो तो आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन कि संडे दी छेड़ा छुट्टी है उस जो किस प्रकार जेड़ा से यहाँ इंजॉय करी सकते। हर कोई पहले ही जेड़ा प्लान है से बनाना शुरू हो जाते। ज़्यादातर बच्चे जेड़ा से अपने संडे दी जेड़ा छुट्टी है उस जो इंजॉय करना जेड़ा से। पर इसी कन्ने अहां दे जेड़ा काम कार है सभी चले रहेंदे कन्ने अहां थोड़ा दे अपने स्वास्थ्य दा जेड़ा ख्याल है सभी जरूर रख दे। पर संडे दी छुट्टी अहां जेड़ा से थोड़ा दे मोबाइल फोन जो अहां साइड च रख दे ना कन्ने अपना जेड़ा संडे दी छुट्टी है या थोड़ा दे समय जेड़ा से प्रकृति जो जरूर जेड़ा से दिन दे ना प्रकृति कन्ने हाँ अपना जेड़ा समय है से बिता देन या अपनी जेड़ा मनपसंद चीज़ कुछ भी जेड़ा बना देन तो कुछ ही ना कुछ यहाँ अपने संडे दी जेड़ा छुट्टी है से अपने कन्ने जरूर जेड़ा से इंजॉय करी पाते न समय का सदुपयोग हाँ किस प्रकार करते न क्योंकि समय के अनुसार चलना हाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। समय के अनुसार हाँ सारे काम करते न तो हाँ काम भी समय के अनुसार करी पाते न कने बाकी जेड़ा थोड़ा दिया खुद जो रेस्ट भी दे पाते न कने बाकी जेड़ा काम मन सभी समय के अनुसार जेड़ा से जरूर होंगे न क्योंकि जिंदगी का सफ़र है ना। जिंदगी का सफ़र जेड़ा से अगर हाँ उस जो खास बनाते न ताई यहाँ अपनी जिंदगी जो भी खास जेड़ा से जरूर बनाई पाते न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कने हाँ कन्ने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते। अपने संडे दी छुट्टी जड़े सभी इंजॉय करा, कने रेडियो गुंजन धर्मशाला भी जरूर इंजॉय करा। तशो तो बर्थडे न कार्यक्रम जगह कने जड़ा अगली फरमाइश रहे से तुह तक पहुँचा देन से यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है सुनील कुमार जी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोटते तो तिना तक अहाँ प्यारा दिया भजन पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही ये भजन इंजॉय कीता कने इस ते बाद हाँ फिर ते वापिस जड़े से अपने कार्यक्रम दे सफर च आइए न कने मौसम दी जड़ा जानकारी है से तो हाँ तक अगर पहुँचान क्योंकि मौसम दे अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कने जड़ा मौसम इस टाइम बोला था अगर बारा दे मौसम दी गल करिए तां बड़ी प्यारी जड़ा धूप है से खिली हुआ है कने यहाँ दे जड़ा श्रोता न से यहाँ कने जुड़े थे तो तिना भी कांगड़े दा जड़ा मौसम दा हाल चाल है सभी तो हाँ तक जरूर दस्या था कि बड़ी प्यारी जड़ा धूप है से खिली हुआ है तो मौसम दे अनुसार अपना जड़ा ख्याल है सभी जरूर तो हाँ रखना है। वर्तमान तापमान की यहाँ गल करिए जड़ा वर्तमान का तापमान है से वह 18 डिग्री सेल्सियस कने अधिकतम तापमान जड़े से सभी 18 डिग्री सेल्सियस है कने न्यूनतम तापमान जड़ा रात दिस में जाने वाला तापमान है तिस की गल करिए तो से 12 डिग्री सेल्सियस जड़े से घिरी सकता है। तो जरूर मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कने तो हाँ सारी भी अपने कामकार तो जरूर करा पर अपना रेडियो सेट अगर तो हाँ ऑन नहीं किया तो जल्दी जल्दी ऑन करा क्योंकि तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफ़र है से तो हाँ तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो शो तो छोटी छोटी गल्ला पर हाँ कई बार होंदा ना कि रिश्तियां जो तोड़ने पर आई आते क्योंकि जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है या हाँ दी जिहड़ा छोटी छोटी गल्ला न कई बार यही यहाँ जो कोई ना कोई नुकसान जड़ा है से जरूर दे करी जांदियां न हर चीज़ का हल जड़ा है से जरूर निकल जाता है पर अगर हाँ अपने जड़ा शब्द हैं अपना जड़ा व्यवहार है से अच्छा रख दे ना कुछ हर रिश्ते च प्यार भावना जड़ा है से हमेशा हाँ जो दिखने जो मिलती है। तो इसी कन्ने हाँ कार्यक्रम दे सफ़र जो अगे बढ़ाते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं तो हाँ सारी भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तुहा सारी भजन इंजॉय के ता कने इस भजन दी फरमाई शाह जो आयु वे नरवाणा ते कने तिना दा नावे वंदना जी तक कहाई गीत ए फरमाइश पहुँचाई कने तुहा सारिया भी इंजॉय की। दर्शो तो गलबात जिड़ा अहाँ करा देना अज से करा देना कि संडे आले दिन जो अहाँ किस प्रकार जिड़ा फंडे है से बनाई सकते। वैसे तो संडे दा दिन कुछ खास होंदा, खास होना भी जरूरी है क्योंकि जालू अहाँ अपना काम जिड़ा से अपने अनुसार कर देन कने अपनी जिड़ा छुट्टी है गर्मियां दा मौसम है थोड़ा दिया अंबा दा जिड़ा सीजन है सभी चल लिया ता अंबा दा जिड़ा स्वाद है सभी जरूर अहाँ लें देन कने मिली जुली करी अपने जिड़ा काम कार है सभी कर देन। तो तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जिड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक फ्री ते पहुँचाई देन क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां तीस नंबर पर कॉल करी सकदे या टैक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है नंबर तुहां मुझे लगा दा नोट करा दे उन्हें ना क्योंकि नोट कर गए ताई तो तुहां कॉल जिड़े से करी सकदे। नंबर है 701-8117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। दर्शो तो नंबर अहाँ तुहां तक पहुँचाई है कने तुहां सारे भी इस नंबर पर जिड़ा कॉल या टेक्स मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जरूर जिड़ा से करी सकते। समय दी ओर अगर अहाँ अपना जिड़ा ध्यान है से लगाते न तो 2:31 जिड़ा न कार्यक्रम चोइया न तो चलते न सुनते न अगली फरमाइश।

तशो तंदु हसारे ये भजन इंजॉय की ता कने इस भजन दी फरमाई शाह जो आयु वे सुवर्णा जी दी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तीन तक हाई फरमाइश ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की ता। इसी कने फिर ते वापिस जिड़े से अपनी गलबात उपर आई आते हैं। तशो तो अजकने दौर दाँ गल करिए गल जिड़े से अहाँ छोटी छोटी जड़ा गल्ला न तिना जो हाँ गुथी न गुथी नज़रअंदाज जड़े से जरूर करते न। उन तो हाँ सोचा दे उन्हें कि क्या जड़ा गल्ला न तिना जो हाँ नज़रअंदाज करते न या अहाँ अपनी छुट्टी किस प्रकार जड़े से इंजॉय करा देन। मुझे तो ये लगा था कि तो हाँ अपनी जड़ा छुट्टी ऐसे मोबाइल फोन तुहंदे जड़ा सामने होना कने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया पर जड़े से तो हाँ बिजी होने, क्योंकि अजकना दौर जड़े से ज़्यादातर बच्चे युवा पीढ़ी बस मोबाइल फोन जड़े से तिनाल है तो सब कुछ तिनाल है। चाहे अहाँ फैमिली दी गल करिए या हाँ अपनी छुट्टी दी गल करिए तो हाँ पूरी छुट्टी जड़े से मोबाइल फोन कने निकाली देना या सोशल मीडिया पर अपना जड़ा समय ऐसे निकाली देना, पर अहाँ तीसरा छुट्टी जो किस प्रकार इंजॉय करा देना या हाँ अपने समय का जड़ा सदुपयोग ऐसे किस प्रकार करा देना से सिर्फ अहाँ मोबाइल फोन तक ही सीमित हैं। तो श्रोताओं तो हाँ भी ये सोचा दे उन्हें कि हमेशा हाँ मोबाइल फोन पर जड़ा गल बात है से ज़रूर करते रहने देना, क्योंकि मोबाइल फोन दे फायदे भी हैं पर नुकसान भी बड़े न। पर से अहाँ पर निर्भर कर दे कि अहाँ किस प्रकार मोबाइल फ़ोन का जिड़ा यूज़ है से करते न। अगर अहाँ सही कोई भी काम है या हाँ जो कोई भी काम जिड़े से समझ नहीं होता या चाहे से स्कूल दे चाहे से सिलाई दे चाहे कोई भी काम है से अहाँ करा दें तो हाँ मोबाइल फ़ोन का यूज़ जिड़े से ज़रूर करी सकते। कने इसी कन्ने पहले होंदा था कि मोबाइल फ़ोन जड़े न से नहीं आते थे तो हाँ चिट्ठी जड़े से लिखी करी भेजते थे, पर हूँ जड़ा संपर्क ऐसे ऑडियो कॉल करा या वीडियो कॉल करा तो हाँ जड़े से करी सकते। तो इदी वास्ते तो फायदेमंद है थोड़ा देया जड़ा संचार सुविधा ऐसे अहाँ दी सर लोई, क्योंकि अहाँ कोई भी काम अगर अहाँ अगले व्यक्ति जो दस रहे हैं तो अहाँ जल्दी जल्दी जड़ा अपना फ़ोन ऐसे उठा देना कर मोबाइल फ़ोन जड़े से फ़ोन जड़े से अहाँ करी देना तिदी वास्ते तो फायदेमंद है। कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन जहाँ ज़्यादा समय तिथु दे दे या वीडियो गेम है या गेम्स पर अहाँ कई बार मोबाइल फ़ोन दे जड़ा आदि ऐसे हो जाते तो इतों तो मोबाइल फ़ोन का जड़ा नुकसान है से ज़रूर अहाँ जो दिखने जो मिला था। कने संडे की जड़ा छुट्टी है से अहाँ तो हाँ तक पहुँचा दे थे कि किस प्रकार अहाँ इंजॉय जड़े से करी सकते। प्रकृति की अहाँ गल की थी तो प्रकृति की जड़ा सुंदरता है ना से हर कुछ जो मनमोहित कर लेंदी है, पर अहाँ किस प्रकार अपनी प्रकृति का जड़ा ख्याल है से रखते न से अहाँ पर निर्भर करते हैं। तशो तो फिर यहाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश पहुँचा देना तो हाँ सारे भी इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आंबोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तो हाँ सारे गीत इंजॉय कीता कने फिर ते हाँ वापिस जड़े से अपनी गलबात ऊपर आइयोन तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते तो श्रोताओं गल बात अहां दी जिहड़ा चली होए से चली होए संडे आला दिन आजकना जिहड़ा दिन है से वे संडे दा कने तो हाँ जरूर संडे दे दिन जो खास बना दे होने ने सभी अपने अगने जालू हाँ संडे जो खास बना दे न तो कुछ यादा जिहड़ा न तिना जो हाँ संजोई करी रख दे न क्योंकि हर दिन अहाँ दिने दी शुरुआत किस प्रकार कर दे न या अपने जिहड़ा काम कार अहाँ सोचे होंदे कि नहीं इस प्रकार अहाँ अपने जिहड़ा काम मन से करने न कने संडे दी जिहड़ा छुट्टी है स्कूल दा जिहड़ा काम है सभी बच्चे करा दे होने न क्योंकि फिर मंडे आई जांदा फिर अहाँ दी जिहड़ा रूटीन है से तिने शुरू हो जांदी स्कूल जाना फिर घर वापिस आना फिर थोड़ा जिहा अपने यारा दोस्ता कने मस्ती करना कुछ ये जड़ा हुंदा समय है से इस प्रकार हुंदा कने जिन्हें यहाँ अपने बचपन च जड़ा बचपन है तिसते बड़ा हुंदे तो कुथी ना कुथी यहाँ थोड़ा दिया और अपने जड़ा काम कार हैं तीच बिजी हो जाते अपने बचपन जो जड़ा है से यहाँ भूली जाते पर बचपन जो जड़ा बचपन अहाँ बिताया या बचपन दियाँ जड़ा याद न से जरूर अहाँ जो तरोताज़ा जड़े से हो जाए जालू अहाँ कोई भी काम कर दे न अहाँ तिना याद जो फिर ते जड़े से याद कर दे कने तिना याद जो ही याद करके अहाँ कुथी ना कुथी खुश जड़े से जरूर हो जाते तो जिंदगी का सफर यही है पर अहाँ हमेशा जिंदगी जो इंजॉय किस प्रकार करते न से यहाँ पर निर्भर करता है कने अहाँ दे जिहड़ा श्रोता ने से भी अहाँ जो व्हाट्सएप मैसेज करी करी जिहड़ा से अपनिया फरमाइशा अहाँ तक पहुँचा देन कने अहाँ दी जिहड़ा कोशिश है यही रहती है कि तिना दियाँ फरमाइशा अहाँ जरूर तिना तक पहुँचान तो अगली फरमाइश पहुँचानी है पर अगले जरा श्रोता न पहले कर दें तिना कने गल बात हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च
1: जी ठीक ठाक
0: हां जी ठीक ठाक हैं जी तो हां ठीक ठाक हैं न
1: हां जी ठीक ठाक जी सब
0: जी तो हां कुछ ते बोला दी कने तू हंदा ना के जी
1: मैं दाड़ी ते बोला तारा चंद जी
0: जी दाड़ी आले दे क्या हाल चाल है जी गर्मी कितनी के उस साइड
1: बस जी ठीक है ना हालो का राहत मिली गई थोड़ी गर्मी ते
0: जी गर्मी ते थोड़ी राहत मिली गई है ना जी
1: हां जी हां जी
0: जी तो आज संडे है संडे दा दिन किस प्रकार चलिया तो हुंदा जी
1: बड़ा बढ़िया चले संडे दा दिन ठीक है आज सत्संग गए थे सत्संग सुन के आए के दुकान ते बैठ गए
0: जी अच्छा दुकान पर आई है कि
1: आई आई
0: जी और दुकान दा काम भी जिड़े से शुरू हुई है ना जी
1: हां जी हां जी
0: जी सारे काम जिड़े से इसमें अनुसार होना भी जरूरी है ना जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: आए तो हाँ गाना सुनाई दिया डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज बारो मेरे पतना दिया तारो
0: जी जरूर ये गीत डूगी डूगी नदियाँ वाला गीत जिड़े से तो हाँ तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: जी जी तो श्रोताओं चल दी न फरमाइश दी और

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये गीत ये फरमाइश अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो हेलो
1: जी।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्कार मैम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न? हेलो श्रोताओं कोल जड़े से डिसकनैक्टिड हुई हो तो जरूर हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर चे वर्ते न क्योंकि सफर जड़े से हमेशा जिंदगी दा भी चले रहा है कने समय दा भी अपने हिसाब कने चले रहा है तो समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। तो अगे बढ़ते न कने अगला जड़ा गीत है अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न तो सारी भी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इस कार्यक्रम दे सफर कने भी जुड़िया। इस सफर दा जिहड़ा समय है से तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। फिर ते अहां दे अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गल बात। हेलो
1: जी नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: मैं कालू बोला हरिपुर ते।
0: जी हरिपुरे ते जी।
1: हाँ जी जी गाना सुनना कुछ सैलड़ियाँ कुछ पीलड़ियाँ।
0: जी गाना सुनना तो हाँ कुछ सैलड़ियाँ कुछ पीलड़ियाँ।
1: हाँ जी
0: जी और ठीक ठाक हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी बढ़िया तो हाँ सुना
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक हैं जी। नोईता जी।
1: नोईता जी कल्ले दी बरखा हुई है गर्मी ते बड़ी राहत मिली हो।
0: जी गर्मी ते बड़ी ज्यादा राहत मिली हो ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी पर आज कने मौसम दी गल करिए ता आज भी ना एहसास नहीं होता कि गर्मी
1: कल बरखा हुई है।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी
1: ऐसा फर्क पई है जी यहां तो पर छिटे पोंदे ना कल बरखा होएगा ना आज ज्यादा बाल गड़ी पिया।
0: जी जी जी एहसास नहीं होता कि बरखा हुई हो है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी तो जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहदा।
1: हाँ जी बड़ी बड़ी मेहरबानी जी मैडम जी।
0: जी तो हन जी
1: ठीक है मैडम
0: जी। तो श्रोताओं चलते न सुनते न इस प्यारी दिया फरमाइशा जो

0: श्रोताओं, तो सारे ही सुनिया ये गीत, ये फरमाइश फिरी ते अगे वर्दे न कने अगली जड़ा फरमाइश है से जरूर तुह तक पहुँचा देन। तुह सारी ही इसा फरमाइशा जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: बन जा रही थी लेकर देने की पत्नी अपने पति से।

91.2 MHz पर ये तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कहने तुहा सारे जे पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहा तक रहंदे 2 से 3 बजे तक तशो तो जिंदगी दा जेड़ा सफर है से यहाँ जो हमेशा ये सिखाते हैं कि कोशिश ऐसी करा कि अहाँ हमेशा हार भी मनी लैन फिर भी अहाँ ये सोचने कि अहाँ कालू दी अहाँ जो जेड़ा जीत है से मिलिए ही है क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना उतार चढ़ाव जेड़ा न से हमेशा जिंदगी चौंदे रहते पर अहाँ हमेशा खुद पर हौसला खुद पर विश्वास रखते हैं ना कुछ ही अहाँ सफलता जेड़ा से हासिल करी पाते हैं तैसी करने तो हाँ सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति

0: और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

नमस्कार श्रोतों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर थी वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और आऊं तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोता रहा कार्यक्रम मंच। श्रोताओं आया कार्यक्रम रहा आगाज कर लेंदे सभी पहले इस खूबसूरत गीता सोगे।

এতন্ত আপনার রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা और आऊ सचिन कपूर है श्रोतों श्रोतों अच गल कर देना है आजकल अरे बच्चे के ना उस फोन न हो कि तूने चिपकुरे बंदे ने माँ बुढ़े के सो बड़े ज्यादा परेशान है आऊ इपार जी धर्मशाला रकस की ग्रह अंदर गो थो श्रोतों तो तड़ी में गल बात करे ता अकांटी बेचारी ना बड़े बड़े परेशान और परेशान कस गल्ला था कि तेरे बच्चे के ना सो फोन ना छड़ देने पूरी गल बात दस ला तू सुन इस गीता था बाद।

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर तुंदे सभी रेडियो सेट में हाजिर है। जो गलबात चल रहे थे कि फोन ना रे आऊँ दस सुनता तो कि आऊँ धर्मशाला वेकस की ग्रह अंदर गुछूरत हो ग्रह रहा ना ने लेना चाहता तो आंटी ये सख्त ना कर रहे कि ग्रह रहा ना मत लेंदा बच्चा पर जरूर बली है इस गला बुटे तो बच्चे ना फोन ही ना छड़ दे बलदे ने स्कूल लगे ने ठीक है देने भी बाथरूम गाना तो फोन सोगे बुना ठीक है स्कूल लो गाने या कॉलेज गाने तथों बाद जाने ना तो फोन बिल्कुल सोगे बुना मतलब कि तू है मन नहीं ना सकता है। सो आंटी बेचारे इतनी परेशान थे कि सो बल दी थी कि मेरे ना कोले दब्बू दोनों दोनों फोन ना कि सो ना छड़ दे रात येरी गल करन बल्लू था वजाई अंदर फोन ना चलन दे रेंदर 12-12 अक बज तक बेगा उठना तो फिर स्कूल लो या कॉलेज किया सो चले गाना तो सो आंटी परेशान ऐसा गल हुआ कि मतलब सो बच्चे के ना सो अपनी माँ बड़े रिफीलिंग्स ना समझो कर दे करखा ना करखा और अपने मोबड़ थो दूर गच्छुंदे गलबात ना बुच्चू कर दिया परिवार अंदर क्या बच्चुंदा क्या ना बच्चू करदा सोना समझो कर देन। आइए शतम कार्यक्रम जो बिल्कुल हगुम बढ़ला है इस गीता जो होने लंदे ना पहले

इतने अपना सामुदायिक वीडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तुंदे वीडियो सेट में बिल्कुल चल रही है इस वक्त। श्रोतों बच्चे जो एह किया दूर करन फोन ना थो, ये सवाल आज हर पेरेंट्स रे मन में है। लॉकडाउन में बच्चे मुल्क ज्यादा अटैच पुछ गया फोन ना हो गए, है ना, इतने ज्यादा अटैच पुछ गया कि ऑनलाइन क्लासा चली पी गेम्स खेल गए छुंदे ने फिर क्लासा चल रही ने पूरा पूरा दहाड़ा। ता अबे 2021 थों बाद किया सो बिल्कुल ही मतलब फोन के सोते बच्चे रा ताऊ चाचा लगना लगे पे हो, जिन ताऊ चाचे होगी बंदे थी ने पहले बच्चे बिल्कुल चिपकू रहे थी, आजकल चिपकू रहे ने बच्चे। लेकिन इन्हें जो दूर के करेगा अच्छा, क्या तुसु लगता तुंदे आस पड़ोस में प्ले ग्राउंड हिन, अगर हिन तो तू है अपने बच्चे जो तड़ी जो जरूर भेजा। जी तुंदा काम मुकंदा स्कूल रा होमवर्क हुंदा सो मुकदा या कॉलेज रा कुछ ऐसा काम सो मुकदा या ना भी मुकदा सो स्कूल कॉलेज सो इच्छु करदे तिन्यो खाई करे पानी पियाई करे किया सो ग्राउंडो जरूर भेजा और तिन्यो बोला की जरूर डट कर खेला डट कर पसीना के सोबा ताकि इच करे सो थाके गान थोड़ी देर तिन्यो वेस्ट दिन और तथों बाद स्टडी रे किनारी के सो त्यारा ध्यान लगान। आइए श्रोतों कार्यक्रम में हुण दिन ध्यान न होगी।

सचिन कपूर और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो है सब हुनु कर देन अपने रेडियो सेट मा बिल्कुल लाइव सचिन कपूर सोगे तो गल बात चल रही है फोन ना थाऊ किया दूर रखे गच्छा बच्चे जो ताक एग्जांपल ता मैं दी तशो तो दुआ ए बे आ की तो है अपने परिवार अंदर किया सो डर जरूर रखा है ना कह लिया अगर तू है बच्चे जो बलि दीन तो सो बच्चा तीन गल तुम दे मन्ने लिया मार जाक करना किया सो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी शोभा न दिंदा शो तो बचपना थो ऐसी नजर रखो ये रगी तो सी मार कह बुंदे और किए पेंदे सो पता ही न लगा तो सी आख थप्पड़ ना मारना चाहता लेकिन नजर ऐसे रखा डर ऐसा रखा कि तुम दे नजर ही किया सो कमाल करेगा अच्छा आइए शो तो कार्यक्रम हूं दिन अवे ये प्यारा दिया गीत बनी रहा तू सब रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रहे।

नशो तो कार्यक्रम चल रहा इंदी अपनी गप्पा तुंदे सभी वे वीडियो सेट में गलबात बच्चू कर दिया कि बच्चे चो क्या दूर रखना फोन ना थो तो काफी हद तक पेरेंट्स बड़े ज्यादा परेशान ने है गल्ला थो जो कॉलेज गच हुंदे ने बच्चे तिया जो क्या डरान है ना सो तो अपनी मस्ती अंदर ना अपनी धुना अंदर ने इस वक्त इंस्टा अंदर लग रहे ने फेसबुक अंदर लग रहे ने व्हाट्सएप अंदर लग रहे ने लेकिन अपनी मोबड़े एक नारी या अपने परिवार दुई घड़ी बही करे भी कि सो गलबात ना करो कर दे ना तैयारी किनारी हेरू कर दे ना तीनों पता लगू करता कि किती भी है सौ बच्चों कर देन है ना तब मोस्ट इंपोर्टेंट गल्ला ने परिवार हो गए बैखा हेरा होना क्या बच्चुंदा क्या ना बच्चुंदा ये गल जरूर नोटिस करा अपने माइंड में लिया कुछ गल ऐसी जो तुंदी दादी थो तुसु सीखने मिली सकदी ने कुछ गल ऐसी ने जो तुंदे मम्मी थो सीखने मिली सकदी ने कुछ गल ऐसी जो तुंदे भाई थो सीखने मिली सकदी ने तीनों गल्ला जो जरूर कैप्चर करा ये इंस्टाग्राम अंदर ऐसा वैसा एरी करे कि ऐसा कुछ हथे ना लगने वाला तो ये शो तो हुंदे ने प्यारे दे गीत

सामुदायिक वेडियो गुंजन तो है सब ये ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर रहा बिल्कुल लाइव है तो है इस वक्त मुंजो होगी बन रो ना उम्मीद करू नो आनंद इच्छू करता बुना गाने हुनने रहा भी और सोगे सोगे गल बात रहा भी आनंद इच्छू करता बुना तुसु सभी हो है ना। तो बिल्कुल कोशिश करा सब श्रोता कि अपने बच्चे जो टेढ़ी नजरी जरूर है लेकिन मार के सो बिल्कुल ना बज्जा बच्चे हो थप्पड़ के सो बिल्कुल ना पान तो है बच्चे जो नजर ऐसे कमाल करेगा अच्छा तुम देखा ना। और अक्त जी छोटे छोटे बच्चे ना आजकल रुगड़दा डर दो साल रहे चूट साल रहे बच्चे के न इनके आस पड़ोस में कई ऐसे उदाहरण त्राय त्राय चूट चूट साल रहे बच्चे तीनों फोन दिले ता तीन खाना खाना तो सोचा ले सो चूट साल रहे ता तीनों फोन मोड़ो कर दो ता सो खाना खाओ कर देने जिन्हें तीन भी साल भी कुड़ी या दब्बू भी साल रहे बुझेगा ता सो क्या कर ले या पंद्रह साल रहे बुझेगा ता सो क्या कर ले मतलब फोन ने बगैर तो तैयारी जिंदगी बड़ी अधूरी रहनी मतलब तीनों फोन तुम्हें मन ही ना सकते कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछगा ना पेरेंट्स इंपॉर्टेंट बोन ना बोन पेरेंट्स बिना तीन रह लैन अपने कमरे अंदर लेकिन फोन बगैर तीन ना रह सकना फोन बगैर तीनों ना निंदर पे सकते हैं श्रोतों ये गल मेरे तो है लिख कर ले लिया। आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ंदन मजेदार माहौल बन रहा माहौल जो और ज्यादा बेहतरीन बनंदन और हुंदन ये प्यारे दिया गीत

वाजी वाह, बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है शोधों गीता हुनने रहा। तो ये सभी ट्यून कर रहे इस वक्त 91.2 MHz पुठी वेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो गीत है हुनु करते हैं। तो शोधों हम लेनो अवे तू सुथो इजाजत है ना, जूरा थो धर्मशाला रेगस की ग्रां दर आंटी बल्लो थो के बच्चा ये कर दिया था तुंदी फरमाइश माज में ये टॉपिक भी बनाई था और अपने सभी श्रोता तक भी पहुंचाई था है ना। तो उम्मीद करनो सब श्रोता ध्यान दिल ले अपने बच्चे पुट्ठी फोन ना थों थोड़ा करी दूर रखने री कोशिश किया सो जरूर कर ले, क्योंकि बलदेन श्रोतों कोशिश करने वाले री कदी हार ना बंदे। तो कोशिश जरूर करा, मुश्किल है लेकिन थोड़ी करी कोशिश जरूर करा, नहीं तो ये फोन एक ऐसा एडिक्शन है, ऐसा नशा के बाद अंदर छुड़ाना मुश्किल बचगा ना लतुस वो। तो जरूर छुड़ा, जो स्कूल गोइंग बच्चे ने, कॉलेज गोइंग बच्चे ने, जो हल्कचूर साल आ रहे, पंच साल आ रहे बच्चे ने, तीन था ये एडिक्शन के ये जरूर छुड़ाई लिया। लेनो इजाजत, गंदे गंदे बस ये बोलना चाहनू हाँ, हंस दे रहा, मुस्कुरन दे रहा, साफ सफाई रखा और रेडियो गुंजन में सचिन कपूर जो हुन दे रहा। जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अब ईरान ने कहा युद्ध खत्म होने के करीब, होर्मुज व पुनर्निर्माण पर बातचीत का फोकस। वायुसेना का मालवाहक विमान जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त, 5 वायुसेना कर्मी शहीद। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को तुरंत पकड़ लेंगे AI कैमरे। 76 OTA लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के, 50 व रेडियोग्राफर के 36 पद भरेंगे। नादौन से धर्मशाला व्यास पुल पर यातायात शुरू। अब समाचार विस्तार से।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका साथ शत्रुता समाप्त करने संबंधी समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया। प्रस्तावित समझौते में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को है फिर से खोलने, ईरान की जब्त विदेशी परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में सहायता संबंधी प्रावधान शामिल हो सकते हैं। वायुसेना का एक मालवाहक विमान AN-32 शनिवार को असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 वायुसेना कर्मी शहीद हो गए। हादसे में शहीद कर्मियों में 2 अग्निवीर भी शामिल हैं। अब AI आधारित कैमरे ड्राइविंग स्टाइल से बता देंगे कि वाहन चालक नशे में है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 75 प्रमुख स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस व्यवस्था के तहत लगे स्मार्ट कैमरे 24 घंटे सड़कों पर नजर रख रहे हैं। इसके चलते यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान तेजी से हो रही है और चालान अपने आप दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने जा रही है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑपरेशन थिएटर लैब और असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड 2 रेडियोग्राफर के कुल 162 पद भरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग इन भर्तियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता जिस पुल का इंतजार कर रही थी वो अब पूरा हो गया। नादौन से धर्मशाला मार्ग पर ब्यास नदी पर निर्मित नया पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। पुल के शुरू होने से नादौन शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम होने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से उतरने और निजी होटल चेन को चुनौती देने के लिए निगम इस माह के अंत तक प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करेगा। निगम का दावा है कि ये योजना पर्यटकों को विशेष सुविधाओं के साथ VIP अनुभव प्रदान करेगी और साथ ही निगम की आय बढ़ाने में भी

शिक्षकों की स्कूल छुट्टी के बाद जनगणना कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो गया है। शिमला में शनिवार को राजकीय अध्यापक संघ के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक में इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा हुई। संघ का कहना है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है, इसलिए स्कूल छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन कार्य क्यों करेंगे। यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह से रहा तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है और सोमवार को इस मामले पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। ओमान तट के पास अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने हर स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो उधर अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे आदेशों का पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। ओल्ड पेंशन से संबंधित सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि इस मसले पर हमारी नीति स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दूध खरीद व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति किलो और भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति किलो कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों की नवगठित परिषदों की पहली बैठक के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने 29 जून को इन चारों नगर निगमों की पहली बैठक आयोजित करने की तिथि निर्धारित की है। प्रदेश के सामान्य जलाशयों, नदी नालों तथा उनकी सहायक धाराओं में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रदेश के सभी सामान्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट तथा मछली बिक्री की अनुमति नहीं होगी। ये जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक एवं प्रधान मुख्य मत्स्य संरक्षक विवेक चंदेल ने दी। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला परिषदों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा नवाचार परियोजना के तहत राज्य भर में जल एवं जलवायु संरक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 12 जिलों के कुल 2662 चयनित सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की शुद्धता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की जाएगी। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको एडवेंचर जिपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक वादियों से घिरा नड्डी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्यों के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रही है। नई जिपलाइन से ये क्षेत्र रोमांचक पर्यटन गतिविधियों के साथ और अधिक आकर्षक बनने जा रहा है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते और श्रोता इसी नमस्ते के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। आज है संडे, खूब होगी मस्ती और खूब होगी धमाल। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारा आज के दिन हमारा श्रोता जो है विश्राम भी करते हैं और वैसे भी 6 दिन हम काम करते हैं, 7वां दिन हमारा विश्राम का दिन होता है। इस दिन हम आराम करते हैं, घर के

भट्ट के साथ देशोदो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। तो आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपके साथ साझा करनी है। थोड़ी सी हम वेदर की बात करें, यानी मौसम की बात करें, तो आजकल आप सभी जानते हैं कि मौसम जो है करवट बदल रहा है। कभी तेज़ धूप हो रही है तो कभी काफ़ी ठंड हो रही है। पिछले कल की अगर हम बात करें तो पिछले कल खूब सारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो गई थी। हल्के फुल्के स्वेटर डालने की भी ज़रूरत पड़ गई थी, और साथ ही साथ हमारे पंखों को भी थोड़ी सी रेस्ट मिल गई थी। जी हाँ श्रोताओं, इसी तरह से आप सभी ने महसूस किया होगा कि कल थोड़ा सा बदलाव था और आज वैसे फिर से धूप तेज़ हो गई थी। तो थोड़ा सा इस बदलते मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि जब श्रोताओं हम अपना ख्याल रखते हैं ना, तो होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं बीमारियों से बचे रहते हैं। ज़्यादा ठंडा मौसम हो तो थोड़ा सा हमें अपने खाने पीने में बदलाव करना चाहिए। एकदम फ्रिज से निकाली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम जब फ्रिज से एकदम निकाल कर चीज़ें खा लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा गला ख़राब हो जाता है, और जब गला ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है, और दवाई हम और हमारे श्रोता बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो देखा जाए कोई भी दवाई खाना पसंद नहीं करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों से दूर रहें तो थोड़ा सा खुद को समय दें, खुद का ख्याल रखें, खुद की देखभाल रखें। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद ले पाते हैं। तो श्रोताओं, थोड़ा सा हम अपनी बातों को देते हैं विराम और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

चौदह इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहिए रखिए। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे मौसम के बारे में। तो श्रोताओ, गर्मियों का जो मौसम होता है इसमें लू लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो लू से बचने के लिए हम जो है पानी का सहारा ले सकते हैं। दिन भर में कम से कम हमें 8-10 गिलास पानी ज़रूर पीने चाहिए, और पानी को हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, नींबू पानी, शकंजवी, या फिर ज़्यादा पानी पीने को मन ना कर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। वैसे तो गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है और बार बार हम लोग पानी पीते हैं, और गर्मियों में थोड़ा सा हमें अपने कपड़ों का, अपने वस्त्रों का भी ध्यान रखना होता है। थोड़े से ढीले और हल्के रंग के वस्त्र पहनने से गर्मी कम लगती है। साथ ही साथ जो पैदल चलने वाले श्रोता है वो अपने साथ छाते का सहारा ले सकते हैं, सनस्क्रीन जो है लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है गॉगल भी आंखों पर लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आंखों को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं श्रोताओं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और फिलहाल इस समय हमें रखना है अपने श्रोताओं का ध्यान और उन्हें सुनवाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आज बात कर रहे हैं गर्मी में खुद को सुरक्षित रखने के बारे में और हाँ फिट रखने के बारे में। तो श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में तापमान तेज़ी से बढ़ता है और मन करता है कि बस ठंडे वातावरण में बैठे रहें और दिन भर कुछ ठंडा लेते रहें ताकि बाहरी वातावरण का अधिक एहसास ना हो। लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाता है कई बार। ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए पंखे के नीचे बैठते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मौसम का बदलाव होने की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं जैसे एसी या ठंडा पानी पीना, ये हमारे लिए ख़तरनाक या फिर दिक्कत पैदा कर सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कामकाजी लोग घर पर बैठे रह सकते हैं क्योंकि बाहर बिना काम के निकलना भी ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अगर आपको काम नहीं है तो घर पर आराम से बैठिए, क्योंकि तेज़ धूप हमें बहुत तरह से परेशान करती है। कभी सर दर्द, कभी चक्कर आना, कभी लू लग जाना, इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। गर्मियों में धूप में बाहर जाने से, बाहर का खाना खाने से डायरिया, हीट स्ट्रोक और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ त्वचा रोग जैसे फंगस, इन्फेक्शन, खुजली, त्वचा पर दाने आदि होना, आंखों में खुजली, लाली होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है सुरक्षित रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को यहाँ पर देते हैं विराम और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गीत में कि जो बात इस जगह में है वो कहीं भी नहीं है। इस जगह पर आकर हमें बहुत सारे दोस्तों से मिलना मिलाना होता है, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी हम तक आते हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे कार्यक्रमों की भी सराहना करते हैं, तो अच्छा लगता है। और इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ फिर से हम अपने विषय की ओर रुख करते हैं। तो आज हम गर्मियों के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में बात कर रहे थे श्रोताओं। तो गर्मियों में धूप में बाहर जाने से बहुत सारी जो है परेशानियां हमें होती हैं, इन सब से बचाव हेतु प्रातःकालीन या फिर शाम के समय जब धूप ढल जाती है तो अपने घरों से बाहर निकलकर हम बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ समय सैर के लिए लगा सकते हैं। कम से कम आधा या एक घंटा ज़रूर अपने आप को समय दें, अपने शरीर से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। बहुत सारे काम श्रोताओं करने के लिए होते हैं लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अपना स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो है हम खुश रहकर इस जीवन को जी पाएंगे। गर्मियों में स्वयं को बचाने हेतु जो है हम जो सखियां हैं वो स्कार्फ का सहारा ले सकती हैं, या दुपट्टे तो उन्होंने लिए होते हैं उसे भी सिर पर रख सकती हैं। और जो हमारे पुरुष भाई होते हैं, आपने देखा होगा कि निचले इलाकों की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर पड़ती है, तो सभी जो पुरुष हैं वो अपने साथ गमछा ज़रूर रखते हैं। बहुत सारे श्रोताओं को अब ये नहीं पता होगा कि गमछा

क्या होता है। तो श्रोताओ, जिस तरह से औरतें या महिलाएं अपने गले में स्कार्फ डालती हैं, उसी तरह से जेंट्स भी कॉटन का एक गमछा अपने गले में डालते हैं। जैसा पसीना आता है तो उससे जो अपना पसीना भी साफ किया जा सकता है। और साथ ही साथ बहुत तेज़ धूप हो तो हर किसी को जान होती है, हर किसी को धूप लगती है, किसी को भी चक्कर आ सकता है। तो कई बार गर्मी से बचाव के लिए पुरुष भी, जैसे हमारे वो पुरुष भाई जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं धूप में, तो वो अपने सिर पर भी गमछे को रख कर अपने आप का बचाव धूप से कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कहीं ना कहीं धूप से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, हम गर्मियों की बात कर रहे थे, दिन भर में खूब पानी पिए ताकि शरीर से विषैले पदार्थ जो है बाहर निकल जाए। नारियल पानी की बात करें तो नारियल पानी के नियमित सेवन से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और कई सारे मिनरल भी शरीर को प्राप्त होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खरबूजा और खीरे का सेवन जो है नियमित करें। जब कभी शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो ग्लूकोज, नींबू पानी, शिकंजवी या शरबत का सेवन करें। इससे तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ घर से बाहर निकलते समय साफ पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ रखें ताकि बाजार का गंदा पानी जो है आपको पीना ना पड़े। गंदे पानी से हमारा मतलब श्रोता ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि टंकियाँ बड़े पुराने हो जाता है उनका पानी, और कई बार क्या होता है बंदर उनके ढक्कन खोलकर उससे पानी भी पीते हैं और उनमें कभी नहा भी लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो गंदा पानी पीकर हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें, उसे पीकर अपने प्यास बुझाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ नहीं होता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम जो है अपने आप को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए गीत संगीत भी श्रोताओं ज़रूरी होता है, ये भी मन को सुकून देता है और खुशी देता है। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ हम कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां अभी हमें आप तक पहुंचानी है। फिर श्रोताओ, गर्मियों की बात कर रहे हैं। गर्मियों में थोड़ा सा पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए, हमारे शरीर में नमी को बनाए रखता है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पिछले समय की और हम रुक करें, पहले की बात करें तो पहले हम घंटों पैदल चला करते थे, और जब हमें प्यास लगती थी तो इधर उधर देखते थे। उस समय में क्या होता था श्रोताओ, आप सभी ने देखा होगा या हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने सुन रखा होगा कि एक बड़े से पेड़ को ट्याले का रूप दे दिया जाता था और वहाँ पर एक घड़ा रख दिया जाता था ठंडे पानी के लिए, कि राहगीर आकर उसे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे और कुछ समय के लिए वहाँ पर विश्राम भी करते थे। जी हाँ श्रोताओ, इसी तरह से होता था ना। और जब हम जो है इस तरह से पानी के लिए घड़ा रखते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्यास भी बुझ जाती है, और कहीं ना कहीं वो लोग हमें आशीष भी देते हैं, वो दुआ भी देते हैं कि जिसने भी पानी रखा है उसने अच्छा किया है, उसका भला हो कि हमारी प्यास बुझ गई। ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है, घड़े का पानी तो वैसे भी श्रोताओ बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा लगता है, और उसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू जो है मिट्टी की आती है, और गला भी ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे फ़ायदे उसके होते हैं, ठंडा पानी पीने को मिलता है, ऊपर से पेड़ की ठंडी हवा मिलती है। कुछ समय हम विश्राम करते थे और फिर चल पड़ते थे अपने गंतव्य की तरफ। तो श्रोताओ जो है हम आगे की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोतो, गर्मियों की हम बात कर रहे थे। गर्मियों के दिनों में खूब सारा पानी पीना चाहिए और आपने देखा होगा कि आजकल के

में बहुत सारे लोग जो है छबील लगाते हैं ताकि जो है पानी पीकर लोग अपना आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस करवा सकते हैं। और खैर हमारे यहाँ की थोड़ी सी बात करें तो हमारे यहाँ तो मौसम में बदलाव होता ही रहता है। एक दो दिन गर्मी पड़े तो दो तीन दिन के बाद जो है बारिश हो जाती है या ठंडा मौसम हो जाता है। नीचे वाले इलाकों की बात करें तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो श्रोताओ जब भी बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अपने सिर को ढक कर रखें, अपनी बाजुओं को ढक कर रखें। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब हम सुरक्षित रखते हैं तो हर मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। और खैर मौसम की बात हो रही है, मौसम कोई भी हो अपने साथ ढेर सारी समस्याएं और परेशानियां लेकर आता है। तो थोड़ा सा अगर हम समझदारी से चलें तो हर मौसम को हम इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल बातें तो हमारी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओ, गुड इवनिंग। धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर, और अपनी बातों और जानकारियों के साथ कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको एडवेंचर जिप लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। धौलाधार पर्वतमाला के मनमोहक वादियों से घिरा नदी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्य के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रहा है। नई जिप लाइन की इस क्षेत्र रोमांचक पर्यटन गतिविधियों के साथ और अधिक आकर्षक बनने जा रही है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए
1: पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: फरिश्ते। श्रोताओं, साई के 7 बजे हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे देओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त RJ सुमन। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम बात थोड़ी सी करते हैं ब्लड डोनर डे के बारे में। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि एक यूनिट लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त किसी दुर्घटना, सर्जरी या गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को जीवन दे सकता है। भारत में लाखों लोगों को ब्लड की आवश्यकता रहती है क्योंकि हम सभी देखते हैं आए दिन अखबार पर और TV पर कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जब किसी को चोट ज़्यादा लग जाती है, गंभीर अवस्था में कोई होता है, तो उसकी जान बचाने के लिए रक्त की ज़रूरत होती है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं श्रोताओं जो रक्तदान करते हैं, और ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हम किसी की जान बचा सकें, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। अपने जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसे काम कीजिए कि जिसे दूसरा भी याद करे। तो नियमित रक्तदान से शरीर में आयरन का स्तर जो है बहुत ही अच्छा रहता है और संतुलित रहता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो कई बार क्या होता है कि श्रोताओं, कुछ लोग सोचते हैं कि बार बार रक्त निकालने से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना रक्त हम निकालते हैं उतना ही रक्त खुद ब खुद जो है हमारे शरीर में बन जाता है। और वैसे भी रूटीन में अगर हम रक्त दान करें तो क्या होता है, वो ब्लड बैंक में जमा हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरतमंद लोगों के काम आ जाता है। तो श्रोताओ, बातें और जानकारियां हमारी यूं ही चलती रहेंगी, फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस लौटते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें और जानकारियां अभी आप तक पहुंचानी हैं। तो रक्तदान की हम बात कर रहे थे। रक्तदान ना सिर्फ किसी की जान बचाता है बल्कि अपने हमारी अपनी खुद की सेहत का भी ध्यान रखता है। रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो किसी के जीवन को बचाने के साथ साथ हमारे खुद के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन थोड़ा सा सावधानी से हमें चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम कोई दवाई तो नहीं लेते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हैं। और अगर रक्तदान के लिए कुछ एलिजिबिलिटी की बात करें तो श्रोताओं, उम्र जो है 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वज़न जो है हमारा 50 किलोग्राम तक होना चाहिए। हीमोग्लोबिन स्तर कम से कम 12.5 होना चाहिए और रक्तचाप सामान्य सीमा में रहना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी हमें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तभी रक्त प्रदान करना चाहिए। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के साथ फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में रक्तदान की हम बात कर रहे थे, तो रक्तदान से पहले ध्यान देने वाली बातें होती हैं कुछ, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। रात भर की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए, हल्का और हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और खूब पानी हम पी सकते हैं, आरामदायक कपड़े पहनना भी ज़रूरी होता है। रक्तदान के पहले की तो श्रोताओं हमने बात कर ली, अब रक्तदान के बाद की बात करें तो 10-15 मिनट आराम करें रक्त देने के बाद, ढेर सारा पानी और जूस पिए, दिन भर भारी काम या व्यायाम ना करें। अगर चक्कर या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो लेट जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही साथ रक्तदान से जुड़ी जो है जीवन शैली को हम अपना सकते हैं, कुछ टिप्स को हम अपना सकते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड युक्त भोजन हम कर सकते हैं, जैसे पालक और चुकंदर दालें हम ले सकते हैं। नियमित व्यायाम हमें उन दिनों में करना चाहिए और रक्तदान के बाद 1-2 दिन तक ब्रेक व्यायाम से ज़रूर लेनी चाहिए और समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए और धूम्रपान इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ आपका फिर से करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो उज्जैन धर्मशाला।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से वापस आते हैं और कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी दूध उत्पादन संघ मिल्कफेड द्वारा पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दूध खरीद व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया है कि सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सरकारी व्यवस्था के प्रति पशुपालकों की सहभागिता में निरंतर वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 61

रुपये प्रति किलो और भैंस के दूध में 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति किलो किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ केवल सीमित परिवारों तक न रहकर प्रदेश के अधिकांश दूध उत्पादकों विशेषकर छोटे तथा सीमांत पशुपालकों तक पहुँचे। तो श्रोताओ ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में देते हैं एक अंतराल, अंतराल के ठीक बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूँ आरजे सुमन, लेकर हाजिर हुई हूँ गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारियाँ और आपके साथ साझा करते हैं। आपदा प्रबंधन की तैयारी और विभिन्न विभागों के आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से 15 जून 2026 सोमवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया है कि जिला कांगड़ा के विभिन्न उपमंडलों में ये अभ्यास सुबह 9:30 से रात्रि 9:30 तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान संभावित आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों एजेंसियों तथा आपदा प्रबंधन तंत्र के बीच में समन्वय, संसाधनों की उपलब्धता तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। उपायुक्त ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभ्यास को गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से लें। तो श्रोता, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45 और कार्यक्रम में सुनते हैं समाचार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के इतिहास में बेमिसाल और स्वर्णिम रहा है। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश में लोक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दोगुनी गति से बढ़ा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण कर आम नागरिक के सफर को सुगम बनाया गया है। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्रकुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोहों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। शिमला जिले में जुब्बल कोटखाई के मलोग में आज एक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का एक प्रभावी माध्यम है। क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में करीब 176 सड़कें पास की गई हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में हर क्षेत्र तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने बताया कि टिक्कर तहसील में लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से रिकांगपियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नर टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ITBP के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं को समझना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती दी, बल्कि कांग्रेस की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी जिला संवाददाता।
4: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रायांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषि की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। ऊना जिले में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उपप्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन

0: उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है

0: करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
5: ताला।
4: क्या?
5: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
4: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
5: चलो।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन प्रदर्शिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। अब ईरान ने कहा युद्ध खत्म होने के करीब, होर्मुज व पुनर्निर्माण पर बातचीत का हो। वायुसेना का मालवाहक विमान जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त, 5 वायुसेना कर्मी शहीद। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को तुरंत पकड़ लेंगे AI कैमरे। 76 OTA लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के, 50 व रेडियोग्राफर के 36 पद भरे। नादौन से धर्मशाला व्यास पुल पर यातायात शुरू। अब समाचार विस्तार से। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका साथ शत्रुता समाप्त करने संबंधी समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया। प्रस्तावित समझौते में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को है फिर से खोलने, ईरान की जब्त विदेशी परिसंपत्तियों को मुक्त करने तथा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में सहायता संबंधी प्रावधान शामिल हो सकते हैं। वायुसेना का एक मालवाहक विमान AN-32 शनिवार को असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 वायुसेना कर्मी शहीद हो गए। हादसे में शहीद कर्मियों में 2 अग्निवीर भी शामिल हैं। अब AI आधारित कैमरे ड्राइविंग स्टाइल से बता देंगे कि वाहन चालक नशे में है या नहीं। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 75 प्रमुख स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस व्यवस्था के तहत लगे स्मार्ट कैमरे 24 घंटे सड़कों पर नजर रख रहे हैं। इसके चलते यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान तेजी से हो रही है और चालान अपने आप दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होने जा रही है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑपरेशन थिएटर लैब और असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड 2 रेडियोग्राफर के कुल 162 पद भरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग इन भर्तियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता जिस पुल का इंतजार कर रही थी वो अब पूरा हो गया। नादौन से धर्मशाला मार्ग पर ब्यास नदी पर निर्मित नया पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। पुल के शुरू होने से नादौन शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम होने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से उतरने और निजी होटल चेन को चुनौती देने के लिए निगम इस माह के अंत तक प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर प्रिविलेज कार्ड लॉन्च करेगा। निगम का दावा है कि ये योजना पर्यटकों को विशेष सुविधाओं के साथ VIP अनुभव प्रदान करेगी और साथ ही निगम की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। भारत अब 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आने वाले की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और उसे नष्ट करने की क्षमता वाला देश बन गया है। DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संगठन ने 10 और 11 जून को इस प्रणाली के लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की स्कूल छुट्टी के बाद जनगणना कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो गया है। शिमला में शनिवार को राजकीय अध्यापक संघ के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक में इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा हुई। संघ का कहना है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है, इसलिए स्कूल छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन कार्य क्यों करेंगे। यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह से रहा तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है और सोमवार को इस मामले पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। ओमान तट के पास अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने हर स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो उधर अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे आदेशों का पालन करना होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। ओल्ड पेंशन से संबंधित सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि इस मसले पर हमारी नीति स्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दूध खरीद व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति किलो और भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति किलो कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों की नवगठित परिषदों की

नहीं होगी। ये जानकारी मत्स्य विभाग के निदेशक एवं प्रधान मुख्य मत्स्य संरक्षक विवेक चंदेल ने। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला परिषदों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा नवाचार परियोजना के तहत राज्य भर में जल एवं जलवायु संरक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 12 जिलों के कुल 2662 चयनित सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की शुद्धता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की जाएगी। पर्यटन हिमाचल प्रदेश के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको एडवेंचर जिपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक वादियों से घिरा नड्डी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्यों के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रही है। नई जिपलाइन से ये क्षेत्र रोमांचक पर्यटन गतिविधियों के साथ और अधिक आकर्षक बनने जा रहा है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज

उसको दूँ।

पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।